0: भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। हमने आपने देखा जहां गरीब रहते थे बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी।
1: जैसे भी लखनऊ में जो अग्निकांड की घटना घटी है जिसमें ढेर सारे बच्चे कैजुअल्टी हुए हैं और उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से सख्त निर्देश है। और ऐसा नहीं कि ऐसी घटना घटी है तो ही हम लोग कोचिंग संस्थान का ऑडिट कर रहे हैं, हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं।
2: संस्थान
1: को फायर ऑडिट नहीं करवा रहे हैं या फायर शक्ति सिस्टम
2: निकालते हुए
1: उनको नोटिस दी जा रही है, उनको सुझाव दिया जा रहा है, एक टाइम पीरियड भी दिया जा रहा है। टाइम पीरियड के अंदर जो फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं तो उनके बड़ी फिर बड़ी स्तर से कार्रवाई के लिए।
3: Let's now take you through more updates coming in at this hour. Now from Maharashtra, what was first believed to be a tragic accident at Maharashtra's Lohargarh Fort has now turned into a chilling murder mystery. As the probe gathers pace, both Chetan and Sia have been remanded and sent to a 7-day police custody. The deceased father, Ketan's father, in fact, has come out since and leveled some serious allegations against Sia and her lover Chetan, stating that their affair had been going on for over a year and that Sia's family members had concealed that very information amid the startling revelations. While another major conspiracy has been uncovered, revealing that this was not Sia's first murder attempt. While the couple had earlier travelled to the fort and the exact same situation had occurred, but Ketan had managed to survive. Let's bring you more updates coming in at this hour from this very story. An important update coming in. Well, of course, it is a horrific murder. A young man dead, a fiancé under arrest, and a father making explosive claims of a cold-blooded conspiracy. The murder of 26-year-old Ketan Agarwal has sent shockwaves across Maharashtra, with new allegations suggesting that the killing at the Lohargarh fort was not a crime of impulse, but the final execution of a carefully planned plot. Here's a special report that breaks down all the details. Take a look.
4: A young businessman, a wedding planned in a palace, and a death that police now say was no accident. On June 18, 26-year-old Ketan Agarwal, director of a Pune-based real estate business, fell nearly 400 feet into a gorge at the historic Lohargarh Fort. At the time, police treated the incident as an accidental death after Ketan's fiancée, Sia Goyal, reportedly claimed that he had slipped during an outing. But investigators say the truth was far more sinister. Pune police now allege that Sia Goyal and her alleged lover, 22-year-old Chetan Chaudhary, conspired to kill Ketan because he had become an obstacle in their relationship. According to police, Sia lured Ketan to Lohargarh Fort while Chetan arrived separately. The two allegedly pushed Ketan into the gorge and then attempted to pass off the death as an accident. Death passed off as selfie accident. Ketan's father, Vishal Agarwal, has made a series of explosive allegations. He claims that the suspicion first arose because Sia appeared expressionless after Ketan's death and showed no signs of grief.
5: 14/6/2026 को उन्होंने सेम लोहगढ़ किले पे केतन को मारने की सिया ने वापस से पहले प्रयास किया था, उस प्रयास में वो नाकाम हो गई, फिर उन्होंने 18 तारीख को वापस से उसे ले जाके उनके काम को अंजाम दिया। सिया गोयल के माँ बाप और भाई ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी बुआ भी इन्वॉल्व हो सकती है। जिन लोगों को उसके सारी चीजों को पता था कि उसका अफेयर है बाहर और हमारे बच्चे का आज जो वो नहीं रहा, खून हो गया, उनमें उतना ही उनका हाथ है जितना सिया का हाथ है।
4: Perhaps the most startling claim is that this was not the first attempt on Ketan's life. According to his father, on June 14, just 4 days before Ketan's death, Sia allegedly pushed

0: four accused have been arrested in connection with this deadly fire tragedy, and they have now been sent to judicial custody.
1: जैसे भी लखनऊ में जो अग्निकांड की घटना घटी है, जिसमें ढेर सारे बच्चे कैजुअल्टी हुए हैं, और उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से सख्त निर्देश है। और ऐसा नहीं कि ऐसी घटना घटी है तो ही हम लोग कोचिंग संस्थान का ऑडिट कर रहे हैं, हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। संस्थान को फायर ऑडिट नहीं करवा रहे हैं या फायर शक्ति सिस्टम
2: निकालते हुए
1: उनको नोटिस दी जा रही है, उनको सुझाव दिया जा रहा है, एक टाइम पीरियड भी दिया जा रहा है। टाइम पीरियड के अंदर जो फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं तो उनपे बड़ी बड़ी स्तर से कार्रवाई के लिए।
3: पंद्रह लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है, आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था।
4: और सच्चाई तो यह है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है, भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है, हमने आपने देखा जहां गरीब रहते थे बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी।
0: Alright, let's turn our attention to information just coming in this morning. The political controversy over alleged irregularities in donations linked to Ayodhya has now escalated, with senior Congress leaders launching a sharp attack on the BJP and demanding an independent probe into the matter. In fact, senior Congress leader Salman Khurshid, reacting to the allegations regarding the Ram Temple donations, questioned what he described as the prioritization of money over faith, arguing that religious devotion and financial contributions should not be conflated. Meanwhile, you also must note that the Karnataka Congress President B.K. Hari Prasad has gone a step further, alleging that those associated with the administration of Ayodhya have commercialized a deeply religious space. And he's also calling for a thorough investigation under the supervision of a sitting Supreme Court judge. We've lined up those crucial reactions from the Congress for you this morning. Listen in.
5: किसी का भगवान चंदा है, किसी का भगवान पैसा है। हम तो समझते हैं भगवान भगवान होता है, कोई समझता है कि चंदा भगवान होता है।
6: इन अयोध्या देयर इज अ मिसयूज और अ थेफ्ट ऑफ 200 करोड़।
7: ओके,
6: एंड अयोध्या इट इज नॉट बीजेपी हैज गॉट नो रेस्पेक्ट फॉर एनी रिलीजियस commitments. They have converted the entire Ayodhya into business and stealing the money which is donated by the bucks from the country. It's very unfortunate. CIT will not result, will give any results. There should be a thorough investigation by the sitting Supreme Court judge.
0: My colleague Ajay Dubey joins us live this morning with further clarity. Ajay, even though the special investigation team has submitted its preliminary report on the alleged misappropriation of donation funds to the Uttar Pradesh government, the Congress there clearly calling for a probe by a sitting Supreme Court judge?
8: Definitely, see, this is the political issue now, not just Congress, but Samajwadi Party. They are also asking for the investigation in the guidance of a Supreme Court judge. And apart from this, yesterday, SIT submitted their report to the ACS home. And in this report, what we are being informed by the sources that they have requested for the FIR in this case. And apart from this, a big time changes in the structure of Ram Mandir Trust. So that is what is happening. Political comments are being made. And apart from this, Samajwadi Party is taking this issue for the dispute. So this is what is happening right now. They are trying to make it a politicalized issue. They are opposing Bharatiya Janata Party in field, but the SIT, they have submitted their report and soon will be watching action into this case.
0: We'll of course continue to track how this probe progresses and the political reactions that follow with you, Ajay. Thanks so much. Well, the controversy over alleged irregularities in the Ram Mandir donations is now entering a crucial phase, you must note. The special investigation team set up by the Yogi Adityanath government has submitted their preliminary report to the Uttar Pradesh government. And sources say no one has been given a clean chit so far. The probe, though, has raised questions over the donation counting process, over the monitoring mechanisms, the selection of counting staff, and the links between some staff members and trust officials. So as this investigation continues, the SIT has sought more time and additional supporting officers to complete its probe. In fact, they say the final report is expected within the next 10 to 15 days. The opposition, meanwhile, including the Congress and the Samajwadi Party, they are alleging a cover-up and asking why no FIR has been registered so far.
2: इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय. चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है. सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं. कौन है चंपत राय, कहां से आया, ये क्या चीज है, ये ना कोई संत है ना कोई महात्मा है, कौन है, किसका आदमी है, ये बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, कौन है चंपत राय. और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया.
7: सरकार इस पर लीपापोती कर रही है इस मामले को ठंडे बस्ते में, लेकिन भगवान जो है दूरदर्शी हैं, भगवान किसी को भले ये दंड ना दे, भले कोई कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम ऐसे लोगों को जिनका एनवायरमेंट है, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनके खिलाफ भगवान जरूर कार्रवाई करेंगे.
9: इफ देर आर एनी एलिगेशंस रिगार्डिंग डोनेशंस मेड बाय डिवोटीज फॉर टू श्री राम मंदिर, दे मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड ट्रांसपेरेंटली एंड इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ. No individual found guilty should be spared. However, it is ironic that leaders of a party that questioned the Ram Mandir movement for decades are now attempting to position themselves as guardians of Lord Ram's interests.
10: हमने तो या ट्रस्ट ने कोई अभी चंदे की या जो वहां पर दान आता है उसकी प्रतिदिन जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई. इकट्ठा होता है, बैंक वाले गिनते हैं, बैंक वाले बैंक में जमा कराते हैं, उसके बाद वो अकाउंट में जमा होता है. कहीं भी ये सिस्टम डेली का डोनेशन उसकी लिस्ट जारी करने का या अमाउंट जारी करने का नहीं है, नंबर एक. नंबर दो, आने वालों की संख्या घटी नहीं है, जितने पहले आते थे उतने ही अब भी आ रहे हैं, इसलिए इन आरोपों से राम भक्त प्रभावित नहीं है.
11: इसमें ये सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है? अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है.
0: ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द अदर बिग स्टोरीज वी आर ट्रैकिंग. द बैटल फॉर कंट्रोल ऑफ द तृणमूल कांग्रेस अपीयर्स टू बी एंटरिंग अ न्यू फेज, with both camps now taking parallel organizational and procedural steps to strengthen their competing claims over the party's structure and legitimacy. Just a day after Ritaprata Banerjee led the camp and the new working committee, removing Mamata Banerjee as chairperson, Mamata Banerjee too submitted a fresh list of the National Working Committee, reasserting firm control over the organization. Amidst this, five members of the rebel faction, including Ritaprata Banerjee, met Bengal's chief electoral officer, Neelam Meena, in Kolkata, to submit the new National Working Committee list. On the question of claiming the Trinamool Congress symbol, Ritaprata Banerjee asserted that it's not even a question, claiming that his faction is the real TMC. Adding to this, a new district committee will be formed in the next 21 days. Meanwhile, Mamata Banerjee's loyalists have rebuked Ritaprata Banerjee's real TMC claim sharply, with Kunal Ghosh actually reminding Ritaprata Banerjee that it was Mamata Banerjee who signed on the election forms of the rebels.
12: We are the Trinamool Congress, so no question of claiming the party symbol arises.
13: But Mamata Banerjee has also submitted a fresh, you know, list of National Working Committee yesterday.
12: If she has submitted, then it's for the election commission to decide. It's a social media party. Everything comes on the social media, and everything. I'm telling you that what has happened in the last few days. You announce a name, the name of whom you were announcing. He's sitting with us. The name you were announcing, next day he or she is going away. You are announcing a name, next day he or she is submitting resignation. I am categorically telling you, even in the NWC which is being circulated in the social media, I am very confident there will be fresh resignations. Aap log thoda intezar kijiye na, hum log kal National Working Committee ka formation kiye hain. Aane wale 21 din ke andar, Rajya State Committee, har jila ka district president, district committee, frontal organization ka state head, sab naam aa jayega, thoda intezar kijiye. Majority of the elected representatives in the state of West Bengal are with us.
14: Delhi mein jo jama hona tha wo ho gaya.
15: Yahan pe dada aap log kaun kaun ja rahe hain aur
14: hamara party ka chairperson Shri Arup Rai, hamara opposition ka chief whip janab Akhrut Jawan, deputy leader Shri Javed Ahmed Khan, deputy leader Shri Sandeep Shah aur main hum panch log ja rahe
16: hain. Dekhiye ye sab ye sabko hum dosh nahi dete hain. Do char 5, 6, 7, 8 ये सब कर रहा है. अब देखिए, डेढ़ दो महीना हुआ, इलेक्शन हुआ, वो अगर टीएमसी है तो उसका नॉमिनेशन के साथ एक फॉर्म ए और एक फॉर्म बी वो जमा किया है. उसमें किसका साइन है? ममता दीदी का. किसका साइन है? अभिषेक बैनर्जी का. क्या लिखा है उस साइन से? ये साबित होता है वो लोग तृणमूल कांग्रेस है और उस सिंबल का हकदार है. तो जो लोग का सिग्नेचर के ऊपर वो तृणमूल एमएलए बना है, आज बोल रहा है जो वो असली, इतना गिरा हुआ है सोच.
17: देखिए, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज का खत्म होना चाहिए. ये जो परिवारवाद खत्म होना चाहिए. हम लोग तो परिवारवाद के सख्त खिलाफ है. तो अगर ये ऐसा तो नहीं है कि ममता बैनर्जी, हाँ वो राजनीतिक नेता, वो बहुत अच्छी लड़ाकू नेत्री थी, इसमें कोई दुराह नहीं है. वो बामथियों को हटाई भी थी, इसमें भी दुराह नहीं है. लेकिन उनके बाद उनके जो भतीजे को उन्होंने बैठा दिया नंबर टू करके, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर द पार्टीज डेवलपमेंट, फॉर द पार्टीज ग्रोथ, फॉर द पार्टीज बर्थ?
18: ये मजाक है, ये एक सर्कस है. ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे. तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते रितोब्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था. तो हम इसको पूरा न मानते हैं. जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा.
0: All right, in other news, actor Trisha's birthday wishes for the Tamil Nadu Chief Minister Vijay have now triggered a fresh political row in Tamil Nadu. Trisha posted a candid photograph of Vijay seated in front of several birthday cakes while he is seen smiling as he prepares to blow out the candles, drawing attention across social media. But you know, this controversy escalated after DMK's IT wing criticized Vijay, linking the celebrations to the recent ammonia gas leak tragedy in Tamil Nadu. The DMK questioned why Vijay did not visit the victims or their families despite 9 reported deaths and around 60 people being hospitalized in that tragic incident. All right, let's turn our attention now to Maharashtra and the latest coming in from Mumbai this morning. Well, the city is once again battling the fury of the monsoon. Heavy rainfall since the early hours of the morning has left several parts of the city waterlogged, with the Andheri subway submerged, traffic movement severely affected across Mumbai. Authorities have issued advisories for commuters as vehicles struggle through flooded roads and through low-lying areas that are reporting inundation. You can see dramatic visuals coming in from across the city. The IMD, meanwhile, has warned of continued rain, thunderstorms and gusty winds across the city, with a weather alert also remaining in place. And these showers come as the southwest monsoon strengthens over Maharashtra, bringing much-needed rainfall but also disrupting daily life in the country's financial capital. You must note that civic agencies remain on alert as residents brace for more wet weather through the day and perhaps the next few weeks. Sujata Dwivedi is tracking the latest from Ground Zero for us. Take a look at her report.
19: To ensure that the NEET UG re-exam remains completely foolproof and transparent, this

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Bhagwant Mann as the Gurugram police have exposed a conspiracy to manipulate the evidence by fabricating a fake forensic report. Let's listen.
1: Artificial intelligence se generated hai, ye video sachi nahi hai. अकाल तख्त ने उनको मौका दिया कि आप दो फोरेंसिक लेबोरेटरीज जो भी आपको समझ में आती हैं उनके नाम हमें भिजवा दें, हम इस वीडियो की पूरी पड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि दुनिया भर के सिखों में मन में रोष है और बहुत पीड़ा है और दुनिया भर के सिख इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं। भगवंत मान जी ने उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की तो अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद यह कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि यह वीडियो भी असली है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारे दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। इसके विरुद्ध बजाय इसके कि अकाल तख्त साहिब के इस फरमान के लिए वो अपने पापों का पश्चाताप करते या आम आदमी पार्टी केजरीवाल इस पश्चाताप के लिए को बातचीत आगे करते, उन्होंने इसके विपरीत उनके एक मिनिस्टर हरपाल चीमा जी ने 18 जून 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वीडियो नकली है, हमने 1191 फ्रेम का रेफरेंस करा लिया, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, ये सब कुछ नकली है, ये वीडियो तो एआई वाली नहीं है लेकिन ये जो बीच में भगवंत मान है और ये सब कुछ नकली है। जैसे ही ये घटनाक्रम की जानकारी मीडिया सत्रों में पहुंची तो तुरंत पंजाब की लीडरशिप पता करने लगी तो पता चला कि स्वपन शर्मा जो कमिश्नर लुधियाना है वो गुड़गांव में घूम रहे थे कल। इसकी जानकारी जैसे ही पता चली तो खोज खबर शुरू हुई और संत में निकलते निकलते निकलते सच क्या निकल के आया कि भगवंत मान के ब्लू आइड बॉय स्वपन शर्मा ने इस वीडियो को जशनदीप सिंह एसपी के साथ मिलकर गुड़गांव के एक हरियाणा के एक जसप्रीत सिंह के माध्यम से गुड़गांव के एक फोरेंसिक लैब के लिए गुड़गांव के होटल में मीटिंग करी। इस मीटिंग की पहले तो मैं आपको इस मीटिंग की वीडियो दिखाना चाहता हूं, मैं चाहूंगा एक बार इस मीटिंग की वीडियो जरा आप इसको स्क्रीन पे दिखाएं, आपको पहले पता लगे जशनदीप और स्वपनदीप शर्मा कमिश्नर लुधियाना इस होटल में बैठकर पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो फोरेंसिक लोब रिपोर्टरी बता रहे थे ये इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के काले धन और रिश्वत के धन के दम जोड़ पर ये फोरेंसिक की रिपोर्ट बनाने के लिए लुधियाना की वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें ये जो नीली शर्ट में है ये एसपी माफ करना ये कमिश्नर लुधियाना है और साथ में उनके साथ एसपी जशनदीप सिंह जो कि होटल के अंदर रुके थे और उस होटल के कमरे के अंदर ये सारी डील हुई। इसके जसप्रीत सिंह जिसने ये सारी डील कराई थी ये जब जानकारी पुलिस तक पहुंची और वो कंप्लेंटेंट जसजीत सिंह पहुंचे उसको पता चला कि मेरी वीडियो एक्सपोज हो गई है, वो अपनी जान माल के बचाने के लिए कि अब मुझे ही मेरा इनकाउंटर ना कर दें, ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जसप्रीत सिंह के बयानों के ऊपर अंकित जो दिल्ली से और अरुण पंचकूला से है जिन्होंने ये फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई थी उनको अरेस्ट किया। फोरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे एसपी जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं, ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसपी जशनदीप ने दिए जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है। अगला स्क्रीनशॉट दिखाना, आप इसमें देखें कैसे जशनदीप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप

0: आपने क्या करना है, आपने उन्होंने लिखा है डन द करेक्टर इन द वीडियो मैच की फोटोग्राफ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान डाउनलोडेड फ्रॉम पब्लिक अवेलेबल, ये लिख दो कि हमने करेक्टर मैच कर लिया है जो भगवंत मान की डाउनलोड की पब्लिक अवेलेबल इमेजेस है इंटरनेट पे उनके माध्यम से, इन्हू इस तरह कोट कर दो एंड देन डिनाई, इस तरह कोट करने के बाद डिनाई कर दो कि ये भगवंत मान नहीं है, ये नकली भगवंत मान है, और ये करके सेंड करो, जल्दी सेंड करो। ये सारा कुक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से श्रीअकाल तख्त साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिसपे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख दुनिया भर के सिखों की मान उनके भावना के अनुकूल उनकी पीड़ा को देखते हुए, आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं, और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस को का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की वीडियो आपको दिखाई, पंजाब पुलिस किस तरह से एसपी और कमिश्नर पहुंचते हैं, और उसके बाद में अभी आपको यह भी बता दिखाता हूं कि किस तरह से जिस लड़के से ये वीडियो बनवाई गई, जब उसको ये पता चला कि मसला ये बन गया है, वो पुलिस तक जाता है और अपनी जान की माफी मांग सुरक्षा के लिए किस तरह से इस लड़के ने बनाई, मैं इसका भी आप जरा बयान जरूर सुने एक मिनट का।
1: Yeah, we have, of course, officials there. The controversy that's come amid that ongoing political and religious debate in Punjab over the authenticity of the video clip, which features the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, that has consistently maintained that this is a fake, manipulated, and part of an effort to malign this image.
0: Hotel le gaye, hum aapko video de denge abhi. Hotel le gaye, hotel ke kamre mein le gaye. Hotel ke kamre ke andar Swapandeep, jinko unhone commissioner ke roop mein introduce karaya. और कहा कि आपको यह काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया। अब सवाल यह है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं, 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है, सारा एक दिन के अंदर 2191 फ्रेम की वीडियो की यह दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है, और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का, हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे, उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे ये काम करवाया, और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने। आप सोचिए आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया, और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए, हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें, और फिर सब लोगों ने आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ, अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खत्म करने का पाप किया।

गया। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका

0: जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं। आज बहुत बड़ा, इससे पहले बेअदबियों की जब घटना घटी, इस पाप के सजा सबको मिली। हमें विश्वास है जिस तरीके से इतना बड़ा पाप किया गया है और इस पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है, चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया, सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया, ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं। कि सवाल आज ये है बड़ा कि जिस कानून को आपने बनाया, जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? कब उस एसएसपी को, जशनदीप एसपी को, और कब कमिश्नर को अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गुरु साहिबानों की बेअदबी के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये पाप कुकर्म करने का किया है, जिसकी कोई भी कहीं भी माफीनामा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें बड़ी पीड़ा के साथ ये बोलना पड़ रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। गुड़गांव पुलिस ने जो काम किया, इसके लिए तुरंत उन्होंने सबको ढूंढकर और सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने करके रख दिया। मेरा मानना है आज देश और दुनिया देख रही है किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अभी पंजाब पुलिस इस केस के ऊपर जांच करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तुरंत भगवंत मान को अरेस्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलेंगे और जरूर बोलेंगे जो गुरुओं की बात करते हैं, आज ये पाप के सामने उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? आज पूरी दुनिया भर के लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद।
1: बहुत सर, टू पीपल इन कनेक्शन विद कंप्लेन दैट वॉज बाय अ फोरेंसिक एक्सपर्ट हु अलेज्ड दैट ही वॉज ऑफर 10 लाख रुपीज टू प्रोक्योर अ फैब्रिकेटेड फोरेंसिक रिपोर्ट लिंक टू दिस वायरल वीडियो कॉन्ट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन द पोल बाउंड स्टेट। ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। Now, let's just also get in my colleague Gurpreet, who's joining us. Gurpreet, this is a fresh controversy that has erupted, you know, with that viral video allegedly linked to the Punjab chief minister. It's been doing the rounds for a while now, and this really exposes the conspiracy to manipulate the evidence by fabricating this fake forensic report. Who was to basically benefit? Who would benefit from this fake video in the first place? And has this managed to cause any kind of political damage to Bhagwat Mann? Or in turn, has it, you know, generated some sort of sympathy for the chief minister?
2: Well, we have seen Gurgaon police had already nabbed 2 cyber experts and they had already confessed before the police, saying that they had got huge money, around 10 lakh rupees, to manipulate this forensic report. We have seen this controversy has been aggravating for last so many days since Akal Takht Sahib Jathedar has already declared this video was authentic, and after that he declared Chief Minister Bhagwant Mann Guru Dokhi, anti-panthic, and after that immediately we have seen the Punjab government, they were able to procure this forensic report, and they denied that video. In video, Bhagwant Mann was not present, the Chief Minister was not present. But now we have seen all the opposition party, they are raising a lot of question mark over this fake forensic report, and they have been demanding immediately resignation of the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Singh Mann. But we have seen a few minutes back, Manjinder Sirsa, he has demanded that immediately case should be registered by the Punjab police on the basis of this video, and new law, anti-secretary law, which has been formed by the government, in that law there should be investigation of this matter. So we have to
1: hold on to that thought there. We also have Vikram Ajitia of the Akali Dal speaking with us. Thank you so much, sir, for speaking with us here this morning on NDTV 24/7. Your reaction to what has really emerged in this case with those 2 people who have been arrested by the police and the claims that they're making as to the money that they were offered to make this fake video?
3: You know, so this is it's about our faith. It's about our faith in our religion,

0: come up with a statement saying that calling the police action as an atrocious act, and she also questioned the TVK government for attempting to arrest the DMK supporters for criticizing the TVK government. But it is not clear what was the section and what the case is about. We have to get a clear clarification from the police officials also, Divya.
1: Right. Thank you so much, Vijay, for getting us those details. And switching tracks now to more news coming out of Tamil Nadu, and it's actor Trisha's birthday wish for the Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, that has triggered a fresh political row in the state. Trisha posted a candid photograph of the Chief Minister seated in front of several birthday cakes while he's seen smiling as he prepares to blow out the candles, drawing attention across social media. The controversy escalated after DMK's IT wing criticized Vijay, linking the celebrations to the recent ammonia gas leak tragedy in the state of Tamil Nadu. The DMK is questioning why Vijay did not visit the victims or their families, despite 9 reportedly died and around 60 others are hospitalized in that very incident. So there you have Trisha there wishing and saying, this is the man who makes it all worth it. And switching tracks now to the NEET re-examination and political row that has erupted a day after the Education Minister Dharmendra Pradhan slammed Rahul Gandhi. The Congress has it back. This is an interview with NDTV when Dharmendra Pradhan there slamming Rahul Gandhi said, accusing him literally of scaring students and promoting, the scare and fear psychosis. He also said that Rahul Gandhi is derailing exam preparations and playing low-level politics. Then we had Salman Khurshid of the Congress party hitting back at Dharmendra Pradhan, saying that he lacks the understanding to grasp what the point of, Rahul Gandhi really was. He also challenged the minister to sit for a NEET exam himself and show how it really is done.
2: वो राहुल गांधी की बात को वो समझते हैं, उनमें इतनी समझ है कि वो राहुल गांधी की बात समझ जाएं। अगर इतनी समझ है तो एक दफा वो नीट में खुद बैठ के बताएं कि नीट में कैसे किया जाता है। ट्रंप ने
3: तो बच्चों के मन में जब एग्जाम में पेपर लीक हो रहा हो और लगातार हो रहा हो, बरसों से हो रहा हो, तो राहुल गांधी जी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करे जब लाखों भविष्य, लाखों छात्रों का, छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने लगे। जो पढ़ाई करता है, जिसका पूरा परिवार लगा रहता है बच्चों को पढ़ाने में, और पहले ही से पेपर लीक, पहले से सब परिणाम दूसरे को मिलना तय हो जाए, तो आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन करे तो क्या करे? सवाल तो खड़ा होता है। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र जी से कोई सवाल नहीं पूछता, उनको बधाई देते हैं हम लोग।
1: And let's just listen into what the education minister Dharmendra Pradhan said on the matter.
4: देखा कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
5: देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की, हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है, मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ। मैं उसको, जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं।
1: And with that, it's a wrap on this bulletin. News and updates will continue on the other side with Breaking Ground with my colleague, Karki Rawat.
6: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना।

0: अंकित नाम का बंदा है, अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडहॉक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है जो, और अंकित नाम का बंदा है। तो दूसरा हमारे पास, इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है इसमें।
1: अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद यह कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि यह वीडियो भी असली है, कोई AI जनरेटेड नहीं है, और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया। सिख रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, कैसे SP जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं, ये वो स्क्रीनशॉट है जो SP जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है। अगर आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए।
2: ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੱਕ ਦਿੱਤਾ।
3: ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਟੈਂਪਰਰੀ DGP ਆਪਣੇ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, SP साइबर क्राइम जशनदीप, उनको इस्तेमाल करके एक फेक रिपोर्ट तैयार कराएं। FIR दर्ज हो यही है, आज है गुड़गांव पुलिस ने कर दिया, मैं धनवादी हूं और मैं चाहूंगा कि इनकी इमीडिएटली अरेस्ट होए, भगवंत मान इस्तीफा दे।
4: All right, so massive political controversy there in Punjab, and the chief minister, Bhagwant Mann, at the center of it, as now it's been revealed by the Gurugram police that two individuals were actually have now been arrested for trying to acquire a report which said that the video was fake, a fake forensic report, and even up to 10 lakhs is what the investigators say that was being offered to get this fake forensic report, with a pre-decided conclusion to say that the video was fake and manipulated, because that is what the Chief Minister Bhagwant Mann has claimed about that particular video that has become a huge controversy in Punjab. And now both the Akali Dal and the BJP, they're hitting out at the Aam Aadmi Party and at Bhagwant Mann, with the BJP saying talking about the kind of bribes that were paid and pressure brought on the police, while the Akali Dal is asking that Bhagwant Mann resign. Remember, Bhagwant Mann maintained that this video that has become a a huge controversy in Punjab is a fake video. He has

0: हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है। मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मूक विद्यार्थी हूँ। मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सबकी परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं।
1: With that, time for us to slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: पे जब वो दौरा करने पहुंची उसके दौरान जो अधिकारियों से पूछताछ करी थी कि आखिर जिस तरीके से जो निचले स्तर पे पानी जमा था वहाँ पर उपाय योजना क्या कुछ किए गए, लेकिन इस दौरान जब मेयर जो है अधिकारियों से बात करी थी इसी दौरान एक जो व्यक्ति है वो वहाँ से जाने की क्रॉस कर रहा था और इसी दौरान जो वहाँ पे जो है नाला खुली होने की वजह से वो उस नाले में मेयर के सामने ही गिरता, जहाँ पर मेयर ने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए उस अधिकारी की वहीं पर क्लास लगा। और इस दौरान अगर आप देखने की कोशिश करें तो अधिकारियों के ऊपर जो है मेयर का गाज गिरते हुए देखने को नजर आ रहा है और मेयर ने स्पष्ट कहा है कि इस तरीके से अगर मुंबई में कहीं पर भी अगर इस तरीके से मैन होल अगर खुले रहेंगे तो वो जो वहां का वार्ड अधिकारी होगा वो भी सस्पेंड होगा, ऐसा स्पष्ट निर्देश यहां पर मुंबई के मेयर ने। लेकिन तमाम तरीके के सवाल उपस्थित रहे, क्या जिस तरीके से मुंबई के मेयर अगर इस तरीके से दौरा कर रहे और उन्हीं के सामने अगर एक व्यक्ति जब उनके सामने से क्रॉस होने की कोशिश कर रहा और नाला खुली होने की वजह से उस नाले में गिरता है जहां पर मुंबई के मेयर खुद उपस्थित है, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जाता है नाले को सफाई को लेकर यह भी एक सवाल सबसे बड़ा उपस्थित होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में जब मूसलाधार बरसात होती है तो मुंबई के अनेक जो निचले स्तर जो भाग है वहां पे हमेशा जो है वो पानी जमा होता है, लेकिन जब यह व्यक्ति यहां से क्रॉस करने की कोशिश करता है उसी दौरान वो उस नाले में गिरता है जहां पर दोबारा उसे बाहर भी निकाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई की मेयर जिस तरीके से दावा करती है कि नाला जो है वो 90% जो है साफ हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि जगह जगह पर जिस तरीके से नाले के जो मेन होल है वो अभी भी खुले, तो लेकिन फिलहाल स्पष्ट जो है फिलहाल इस व्यक्ति को ज्यादा यहाँ पे इंजरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई के मेयर के सामने इस तरीके से गिरना।
1: जी रिजवान, एब्सोल्युटली एन ओपन मैन होल्स इज अ ह्यूज वरी इन सिटीज एंड यू नो द आयरनी ऑफ इट हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द मेयर, द फैक्ट दैट शी इज देयर एट द मोमेंट एंड राइट इन फ्रंट ऑफ हर देयर इज दिस ओपन मैन होल इन व्हिच अ मैन एक्चुअली फॉल्स इन एंड दिस इज वन ऑफ द बिग कंप्लेंट्स दैट द पब्लिक ऑफन हैज, पीपल हैव डाइड आफ्टर फॉलिंग इन टू ओपन मैन होल्स। सो लेट्स टेक यू थ्रू ऑल द डेवलपमेंट्स इन मुंबई। मुंबई वंस अगेन बैटलिंग द फ्यूरी ऑफ द मॉनसून, हैवी रेनफॉल सिंस अर्ली मॉर्निंग व्हिच हैज लेफ्ट सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी वाटर लॉग्ड, व्हाइल अथॉरिटीज इशूड एडवाइस for commuters as vehicles struggled through the flooded roads and low-lying areas. A reported inundation, some of that water has now receded. The downpour also led to multiple rain-related incidents. In Dadar, a tree fell on a parked car following strong winds and heavy rain causing damage to the vehicle. And in Vikhroli West, a retaining wall adjacent to a residential building also collapsed. The India Meteorological Department has warned of continued rainfall, thunderstorms and gusty winds across the city with a weather alert remaining in place.
2: मैं यहाँ पे हिंदा माता में खड़ी हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 पंप फुल फ्लेज में यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, पूरा रोड का जितना भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ रहा है ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से जाने का काम चालू है, लेकिन इसके साथ में जो कचरा आ रहा है जाली के ऊपर उसको भी निकालने का काम पूरा यहाँ पे चालू है। आपने यहाँ पे देखा रेलवे की जो और यहाँ से भी निकाल के कचरा लेके जाने का काम चल रहा है, पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पे और जो जाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।
0: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से इसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे गिरा। जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे। सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है आप उस दौरान कहाँ थे और जब ये डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
3: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था और गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना मेरे को थोड़ा नींद लग गया था, जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला।
4: The most awaited monsoon season has officially and finally begun in Mumbai, but Mumbai, the streets of Mumbai are full of water in its first rain only. Right now I am standing at Sion Gandhi Market area. This is an hotspot area. Even if it rains for a little while, this area gets flooded with water. And right now the situation is same because it is raining in Mumbai since morning. Even yesterday it was raining, but today since morning it's raining heavily. And this very hotspot area of Mumbai, that is the Sion Gandhi Market area, is flooded with water. You can see right in front of me a BST bus is shut down. In front of the BST bus a tempo truck is also shut down. Also the traffic is jammed because of this waterlogging. The BMC had stated that

0: facing the same situation like any common Mumbaikar. We are also Mumbaikars. But the point here is the BMC sat and did nothing before the monsoons. The incumbent government did nothing in the, you know, for the preparation of the monsoons. And now they are blaming everybody else. What were they doing when they know that monsoons are going to arrive?
1: All right, from Maharashtra now to the big controversy in Punjab, where a fresh political controversy has erupted over the viral video allegedly linked to Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. This as the Gurugram police exposed a conspiracy to manipulate evidence by fabricating a fake forensic report. According to investigators, the accused allegedly posed as Punjab government officials and attempted to procure a forensic report supporting a pre-decided conclusion that the video purportedly of the Chief Minister was a fake. Police claim that nearly 10 lakh was allegedly offered to secure a tailored forensic report. The two accused, Arun Mahendaru and Ankit, have been arrested. The development has triggered a fresh political confrontation with the BJP Punjab chief, terming the episode a major moral and constitutional crisis, and Akali leader Bikram Singh Majithia demanding the chief minister's immediate resignation.
2: देखो गुड़गांव पुलिस में शिकायत मिली थी जसवीर की. जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसमें दो लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा. उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है. अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडहॉक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है. जो और अंकित नाम का बंदा है, तो दूसरा हमारे पास, इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है. इसमें
3: अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद ये कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो भी असली है, कोई AI जनरेटेड नहीं है. और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग है. इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया. रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे SP जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है. मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं. ये वो स्क्रीनशॉट है जो SP जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है. अगर आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए.
4: पंजाब अज इतिहास के सब तो गंभीर नैतिक संविधानिक संकट विचों निकल रहा है. श्री अकाल तख्त साहब वालों गुरु दोखी पंथक विरोधी ऐलाने जाने तो बाद भी भगवंत मान कुर्सी नहीं नाल चुंबड़े हुए ने. मुख्यमंत्री पंजाब वालों पहला साढ़े गुरु साहबाना का अपमान किया गया, बाद विच साढ़े सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त की बेअदबी की गई. असी पहला भी कहा सी कि मुख्यमंत्री नूं अपना इस्तीफा दे के अकाल तख्त सामने भुल बख्शा लेनी चाहीदी है, पर मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मनण दी बजाए सारियां नैतिक कदरां कीमतां नूं छिक्के टक दित्ता.
5: होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पुलिस DGP गौरव

0: come knocking into Mumbai. In fact, it's come in making up for that lost time. Do remember that Mumbai monsoon enters around the 10th or the 11th of June, but this time around there's been almost a two-week delay, and that is why you've seen in the last 24 hours, just as monsoon entered Mumbai, it's caused a lot of mayhem. We're talking about Mumbai there battling the fury of the monsoon. Heavy rainfall since early this morning has left several parts waterlogged. Authorities have issued advisories for commuters as vehicles are struggling through those flooded roads and low-lying areas reporting inundation. The downpour has led to multiple rain-related incidents across the city, whether in Dadar, a tree that fell on this parked car following strong winds and heavy rain, causing damage to the vehicle. Then we also had other areas that have reported there has been waterlogging, there have been, you know, trees that have uprooted. The IMD has warned of continued rain and thunderstorms and gusty winds across the city, with a weather alert remaining in place.
1: यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे पाँच है, यहाँ पे छः पंप फुल प्लेज में यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। पूरा रोड का जितना भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से जाने का काम चालू है। लेकिन इसके साथ में जो कचरा आ रहा है जाली के ऊपर, उसको भी निकालने का काम पूरा यहाँ पर चालू है। आपने यहाँ पर देखा रेलवे की जो कूटे और यहाँ से भी निकाल के कचरा लेके जाने का काम चालू है। पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, और जो जाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।
2: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूं। आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है, उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से, इसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे गिरा। जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे। सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है, आप उस दौरान कहाँ थे और जब ये डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
3: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था, और वो गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना, मेरे को थोड़ा नींद लग गया था। जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला।
4: The most awaited monsoon season has officially and finally begun in Mumbai, but Mumbai, the streets of Mumbai are full of water in its first rain only. Right now I am standing at Sion Gandhi Market area. This is an hotspot area. Even if it rains for a little while, this area gets flooded with water, and right now the situation is same because it is raining in Mumbai since morning. Even yesterday it was raining, but today since morning it's raining heavily, and this very hotspot area of Mumbai, that is the Sion Gandhi Market area, is flooded with water. You can see right in front of me a BST bus is shut down. In front of the BST bus a tempo truck is also shut down. Also the traffic is jammed because of this waterlogging. The BMC had stated that this year Mumbai will not face waterlogging because the nalas have been cleared up, but we can see the reality check over here.
5: It is continuously raining since overnight, and the situation is getting difficult for Mumbaikars. We are present here at Western Express Highway in the Ville Parle area, right next to the airport, and you can see the situation of Western Express Highway, one of the important highway which is connecting suburban

0: विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे एसपी जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं। ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसपी जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है।
1: पंजाब अज इतिहास के सब तो गंभीर नैतिक संविधानिक संकट विचों निकल रहा है। श्री अकाल तख्त साहब वालों गुरु दोखी पंथक विरोधी ऐलाने जाने तो बाद भी भगवंत मान कुर्सी नहीं नाल चुंबड़े हुए ने। मुख्यमंत्री पंजाब वालों पहला साढ़े गुरु साहबाना का अपमान किया गया, बाद विच साढ़े सर्व उच्च स्थान श्री अकाल तख्त की बेअदबी की गई। असी पहला भी कहा सी कि मुख्यमंत्री नूं अपना इस्तीफा दे के अकाल तख्त सामने भुल बख्शा लेनी चाहीदी है, पर मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मनण दी बजाय सारियां नैतिक कदरां कीमतां नूं छिक्के टक दित्ता।
2: होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पुलिस डीजीपी गौरव यादव, टेंपरेरी डीजीपी अपने स्वपन शर्मा कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसपी साइबर क्राइम जशनदीप, उनको इस्तेमाल करके एक फेक रिपोर्ट तैयार कराएं। एफआईआर दर्ज हुई है या आज है गुड़गांव पुलिस ने कर दिया, मैं धन्यवादी हूं और मैं चाहूंगा कि इनकी इमीडिएटली अरेस्ट होए, भगवंत मान इस्तीफा दे।
3: जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी, तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, एआई से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की, भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने दो इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना एआई से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी पंथ विरोधी करार दिया। उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर रहे।
4: वीडियो की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। अब उसके बाद बौखलाहट में भाजपा हाथ पैर मार रही है। अगर फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब की पुलिस पंजाब में बनवा लेती, उसको गुड़गांव आने की क्या जरूरत थी।
5: Switching tracks now to more news coming about, and that is the politics that has erupted over the NEET re-exam. A day after the education minister Dharmendra Pradhan slammed Rahul Gandhi, the Congress has now hit back. Do you remember in an interview with NDTV just yesterday, it was Dharmendra Pradhan slamming Rahul Gandhi, accusing him of scaring students and basically promoting, you know, this fear psychosis among students. He also said that Rahul Gandhi is derailing exam preparations and playing low-level politics. Then we also have the senior leader of the Congress party, Salman Khurshid, hitting back at Dharmendra Pradhan, saying that he lacks the understanding to basically know what Rahul Gandhi is really saying here. The point that is being made by Rahul Gandhi is totally not being understood. He also challenged the minister to sit for an exam, the NEET exam himself, and show how it's really done.
6: नहीं नहीं, वो राहुल गांधी की बात को वो समझते हैं, उनमें इतनी समझ है कि वो राहुल गांधी की बात समझ जाएं। अगर इतनी समझ है तो एक दफा वो नीट में खुद बैठ के बताएं कि नीट में कैसे किया जाता है। ट्रंप ने
7: तो बच्चों के मन में, जब एग्जाम में पेपर लीक हो रहा हो और लगातार हो रहा हो, बरसों से हो रहा हो, तो राहुल गांधी जी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें? जब लाखों भविष्य, लाखों छात्रों का, छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने लगे, जो पढ़ाई करता है, जिसका पूरा परिवार लगा रहता है बच्चों को पढ़ाने में, और पहले ही से पेपर लीक, पहले से सब परिणाम दूसरे को मिलना तय हो जाए, तो आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन करे तो क्या करे? सवाल तो खड़ा होता है। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र जी से कोई सवाल नहीं पूछता, उनको बधाई देते हैं हम लोग।

0: Now, all this is in reaction to what was really said by the education minister on NDTV. Let's get you an excerpt of what has been said while he was targeting Rahul Gandhi in that interview.
1: देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी वो न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा. साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है.
2: देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है. मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ. मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था. मैं जब जनप्रतिनिधि बना अब जब मैं एक भूमिका में हूँ मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ. देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं. सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना ये विपक्ष की दायित्व है. उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं. केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है. लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है. मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है. राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े. 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं.
0: And now we're slipping into a very short break. Back with a whole lot.

0: Definitely technical mistakes will happen, but the whole thing in Karnataka is that because the bureaucrats do not, politicians do not have a control on the bureaucrats, and the bureaucrats think that, like, you know, they have become Maharajas, and that is why they leave the public in the pathetic situation. And after the incident, whatever has happened, definitely it's a government's responsibility, and government should definitely have acted more appropriately. And because the Karnataka Congress government is busy in collecting the money from the bureaucrats, bureaucrats do not have control on the system, and that is why all this is happening.
1: All right, more controversy over the NEET exam, and this is after an NDTV interview with Dharmendra Pradhan, and now the Congress has slammed the union minister for his allegations against Rahul Gandhi. So after NDTV's interview with the union minister, the Congress there lashing out. A day after Dharmendra Pradhan slammed Rahul Gandhi and said the Congress has hit back. In an interview with NDTV yesterday, Pradhan slammed Rahul Gandhi, accusing him of scaring students and promoting anarchy.
2: नहीं नहीं वो राहुल गांधी की बात को वो समझते हैं उनमें इतनी समझ है कि वो राहुल गांधी की बात समझ जाएं अगर इतनी समझ है तो एक दफा वो नीट में खुद बैठ के बताएं कि नीट में कैसे किया जाता है ट्रंप ने
3: तो बच्चों के मन में जब एग्जाम में पेपर लीक हो रहा हो और लगातार हो रहा हो बरसों से हो रहा हो तो राहुल गांधी जी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें जब लाखों भविष्य लाखों छात्रों का छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने लगे जो पढ़ाई करता है जिसका पूरा परिवार लगा रहता है बच्चों को पढ़ाने में और पहले ही से पेपर लीक पहले से सब परिणाम दूसरे को मिलना तय हो जाए तो आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन करे तो क्या करे सवाल तो खड़ा होता है अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र जी से कोई सवाल नहीं पूछता उनको बधाई देते हैं हम लोग
1: All right, so the Congress, they're slamming Dharmendra Pradhan and saying that he's not understanding the point that Rahul Gandhi was making. Let's listen into that interview where Dharmendra Pradhan, speaking to NDTV, accused Rahul Gandhi of scaring students and promoting anarchy.
4: देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी वो न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज उठाने के लिए उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है
5: देखिए मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मूक विद्यार्थी हूँ मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था मैं जब जनप्रतिनिधि बना अब जब मैं एक भूमिका में हूँ मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं सत्ता को आलोचना करना सत्ता को प्रश्न उठाना ये विपक्ष की दायित्व है उसको हम स्वीकार भी करते हैं उसमें से हम ठीक रहते हैं केवल विपक्ष के नहीं समाज की मीडिया की सोशल थॉट लीडर्स की इन सब की जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है लेकिन सबकी एक मर्यादा है सबकी एक दायित्व भी है मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है आपकी दायित्व भी कुछ है राहुल गांधी जी ने मैं आपको दो घटना बताऊंगा जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े 21 को परीक्षा होगा राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए मेलोडी करते हैं बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं
1: Alright, news now from Tamil Nadu, where actor Trisha's birthday wish for Chief Minister Vijay has now become a political controversy. Actor Trisha had posted a photograph of Chief Minister Vijay in which he was surrounded by several birthday cakes and he was seen smiling as he prepares to blow out the candles, drawing attention across social media and she wished him happy birthday. Now, the controversy has escalated after DMK's IT wing criticized Vijay linking the celebrations to the recent tragedy in the state, the ammonia gas leak tragedy. The DMK questioned why Vijay didn't visit the victims or their families despite 9 reported deaths and around 60 people being hospitalized because of this incident. News now from Telangana, where a political storm erupted after a road in Hyderabad was named the Donald Trump Avenue. So named after the U.S. president, this was a road adjoining the United States consulate, which was renamed yesterday. It was unveiled as the Donald Trump Avenue as part of celebrations marking the 250th anniversary of American independence. But the move has triggered a sharp war of words, with the BJP saying Congress leader Rahul Gandhi has repeatedly criticized Donald Trump for allegedly hurting India's interests, but the Congress government in Telangana now honoring him by naming a road after him, alleging these are double standards and double speak. Joining the attack, the BRS also targeted the Revant Reddy government, asking why Congress chose to honor Trump if it believes he poses a threat to India's interests.
6: Hum kal wahan maujood tha 250 ka US consulate ka celebrations, kyunki Hyderabad ka incharge minister hone ke nate wahan maujood the. But that naming incident, I know, I don't know, but हम भी उसमें सरकार उनकी request मानी, क्या उसमें कोई relation रखने में कोई गलत नहीं है. इज़ ए नॉट ए क्रिमिनल, इज ए बी ए यू एस प्रेजिडेंट है. उसके बारे में हमारा सरकार की तरफ से हम डेफिनेटली वी विल रेस्पॉन्ड.
7: थैंक यू सो मच.
8: राहुल गांधी के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ राहुल गांधी. ऑन द वन हैंड ही विल शाउट ट्रंप ट्रंप ट्रंप ट्रंप, ट्रंप इज हर्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, ट्रंप सरेंडर ट्रंप सरेंडर, एंड देन हिज ओन गवर्नमेंट इन तेलंगाना रीनेम्स अ रोड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप. सो विच ऑफ इज इट दैट राहुल गांधी इज लाइंग ऑन फॉरेन पॉलिसी, ही इज टेकिंग वन स्टैंड इन दिल्ली एंड हिज गवर्नमेंट इज टेकिंग अदर स्टैंड इन तेलंगाना, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले पेटी पॉलिटिक्स ऑन विदेश नीति? Or is it that Revant Reddy does not take Rahul Gandhi seriously?
9: Representing Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge on the floor of the AICC says that the so-called relationship between Modi and Trump is something that is questionable. Modi is surrendered to Trump, so therefore we should be stern and firm against Trump is what, which Narendra Modi ji is not doing, is what the allegation made by the Congress party in Delhi. Contradictingly, Revant Reddy, who is a Congress chief minister, embraces Trump and then builds a road in the name of Donald Trump. Is this not a contradiction? Is this not hypocrisy?
10: Well, number one, Rahul Gandhi ji says that Donald Trump indulges in economic blackmail, but here is a Congress chief minister who is trying to please people with the Donald Trump road. But the fact is, this is only for diversion. The fact is, there are forthcoming Greater Hyderabad Municipal Corporation elections, the Saibabad and the Malkajgiri Municipal Corporation too. And the Congress government has not laid any road, they have not built any flyover, not a RUB. So no work has been done by the Congress Chief Minister Revant Reddy. And that is why he wants to get some media attention by naming Donald Trump Road.
1: All right, let's shift focus now to Mumbai, where a shocking murder took place on the Mumbai local train. This took place last night at around 10 p.m. and it was over such a simple thing as shutting the door. That is what the altercation was about that eventually led to the murder of a man, and this was in a first-class bogey. It was a dispute over closing the door which led to a passenger being stabbed to death. One person has died in the stabbing. This was, as we said, 10 p.m. last night. That person has been identified as Mayank Lohar. Heavy rain was also pouring between the Kandivali and Borivali stations. The altercation broke out between passengers over closing the door. You can see that individual there. This is after the murder took place, and you can see other passengers there moving to the side and the man on the floor of the train. And we want to warn our viewers, disturbing visuals there. According to Western Railway Police, the dispute escalated to the point where some passengers began assaulting the accused.
11: उसको सजा दो, मेरे को नहीं दो, अपने भी बना है, जुड़े मैं, मेरे बना, मैं तो किसी से ना लड़ता ना जग, कभी दरवाजे में भी खड़े नहीं रहता था, ओ कल रुपए का गया है, अभी तो लगाया नहीं, मेरे बना, कल
12: किसी का भाई किसी का बेटा, आप हर कोई हर इंडियन का भाई हर इंडियन का बेटा है, कोई हम अलग नहीं है।

0: Shifting our focus to what is happening in Mumbai, the city is once again battling the fury of monsoon. Heavy rainfall since early morning has left several parts of the city waterlogged. Authorities have now issued advisories for commuters as vehicles struggle through flooded roads and low-lying areas report inundation as well. The downpour also led to multiple rain-related incidents across the city. In Dadar, a tree fell on a parked car following strong winds and heavy rain, causing damage to the vehicle as well. Meanwhile, in Vikhroli West, a retaining wall adjacent to a residential building collapsed. The India Weather Department has now warned of continued rain as well, thunderstorms and gusty winds across the city, with a weather alert remaining in place as well. In fact, a man fell into an open manhole right in front of the Mumbai mayor's house.
1: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूं। आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है, उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से, जिसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे, जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे। सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है, आप उस दौरान कहाँ थे और जब ये डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
2: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था, और गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना, मेरे को थोड़ा नींद लग गया था, जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला।
3: The most awaited monsoon season has officially and finally begun in Mumbai. But Mumbai, the streets of Mumbai are full of water in its first rain only. Right now, I am standing at Sion Gandhi Market area. This is an hotspot area. Even if it rains for a little while, this area gets flooded with water. And right now, the situation is same because it is raining in Mumbai since morning. Even yesterday, it was raining. But today, since morning, it's raining heavily. And this very hotspot area of Mumbai, that is the Sion Gandhi Market area, is flooded with water. You can see right in front of me a BST bus is shut down. In front of the BST bus, a tempo truck is also shut down. Also, the traffic is jammed because of this waterlogging. The BMC had stated that this year Mumbai will not face waterlogging because the nalas have been cleared up, but we can see the reality check over here.
4: मैं यहाँ पे हिंदू माता में खड़ी हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे पांच है, यहाँ पे छह पंप फुल फ्लेज में यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। पूरा रोड का जितना भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ से जाने का काम चालू है। लेकिन इसके साथ में जो कचरा आ रहा है जाली के ऊपर, उसको भी निकालने का काम पूरा यहाँ पे चालू है। आपने यहाँ पे देखा रेलवे की जो कूटर है, यहाँ से भी निकाल के कचरा लेके जाने का काम चालू है। पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो जाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। पंपिंग पंप के यहाँ पे ही खड़ी हूँ, घर पे बैठ के नहीं होता है। मैं वापस एक बार बोल रही हूँ, हमारी किशोरी ताई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे ले रही है। आप लोक प्रतिनिधि हो, आप लोगों को मुंबई करने चुन के यहाँ पे भेजे हैं, घर पे बैठ के काम नहीं होता है।
5: Yeah, the mayor of Mumbai saying that, you know, you shouldn't do politics regarding this monsoon issue that is going on. You know, Mumbai is submerged, flooding around everywhere. The question is not politics, it's about governance. Had the BMC worked on it before the monsoons, we wouldn't have been in this situation right now. you know, statements like, you know, the opposition shouldn't be sitting in AC rooms and making statements come out in the open. We are all out in the open. We also traveled. We are facing the same situation like any common Mumbaikar. We are also Mumbaikars. But the point here is the BMC sat and did nothing before the monsoons. The incumbent government did nothing in the, you know, for the preparation of the monsoons. And now they are blaming everybody else. What were they doing when they know that monsoons are going to arrive?
6: तो आज मेयर है मुंबई की रितु तावड़े, उनको ढाका ज्यादा दिखता है, बांग्लादेश ज्यादा दिखता है, मुंबई और महाराष्ट्र दिखता नहीं है। जो आज मेयर है मुंबई की रितु तावड़े, उनको ढाका ज्यादा दिखता है, बांग्लादेश ज्यादा दिखता है, मुंबई और महाराष्ट्र दिखता नहीं है।
7: इन लोग ने सालों साल जो की हुई गंदगी है उसको साफ करने को वक्त लगेगा थोड़ा। अभी आए हम लोग महापौर, ये सालों साल की गंदगी है, थोड़ा साफ करने को वक्त दे दीजिए, इनसे अच्छा काम करके बताएंगे।
0: All right, a political storm has erupted in Telangana after a road in Hyderabad was named Donald Trump Avenue. A road adjoining the United States Consulate in Hyderabad has been renamed Donald Trump Avenue as a part of the celebrations marking the 250th anniversary of American independence. Well, this move has triggered a sharp war of words. The BJP says Congress leader Rahul Gandhi has repeatedly criticized Trump for allegedly hurting India's interests. But the Congress government in Telangana has now honored him by naming a road after him. And joining the attack, the BRS has also targeted the Revant Reddy government, asking why Congress chose to honor Trump if it believes he poses a threat to India's interests, if at all.
8: हम कल वहाँ मौजूद था 2250 का US consulate का celebrations, क्योंकि हैदराबाद का incharge minister होने के नाते वहाँ वहाँ मौजूद थे. But that naming incident, I don't know, but हम भी उसमें सरकार उनकी रिक्वेस्ट मानी, क्या उसमें कोई रिलेशन रखने में कोई गलत नहीं है. इज़ ए नॉट ए क्रिमिनल, इज़ ए US प्रेसिडेंट है. उसके बारे में हमारा सरकार की तरफ से हम डेफिनेटली वी विल रेस्पॉन्ड.
9: थैंक यू सर.
10: राहुल गांधी के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ राहुल गांधी. ऑन द वन हैंड ही विल शाउट ट्रंप ट्रंप ट्रंप ट्रंप, ट्रंप इज हर्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, Trump surrender, Trump surrender, and then his own government in Telangana renames a road after Donald Trump. So which of is it? Is it? Is it that Rahul Gandhi is lying on foreign policy? He's taking one stand in Delhi and his government is taking other stand in Telangana, and they are just trying to play petty politics on Videsh Niti? Or is it that Revant Reddy does not take Rahul Gandhi seriously?
11: Representing Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge on the floor of the AICC says that this so-called relationship between Modi and Trump is something that is questionable. Modi is surrendered to Trump, so therefore we should be stern and firm against Trump is what which Narendra Modi ji is not doing, is what the allegation made by the Congress party in Delhi. Contradictingly, Revant Reddy, who is a Congress chief minister, embraces Trump and then builds a road in the name of Donald Trump. Is this not a contradiction? Is this not hypocrisy?
12: Well, number one, Rahul Gandhi ji says that Donald Trump indulges in economic blackmail, but here is a Congress chief minister who is trying to please people with the Donald Trump road. But the fact is, this is only for diversion. The fact is, there are forthcoming Greater Hyderabad Municipal Corporation elections, the Cyberabad and the Malkajgiri Municipal Corporation too. And the Congress government has not laid any road, they have not built any flyover, not a RUB. So no work has been done by the Congress Chief Minister Revant Reddy. And that is why he wants to get some media attention by naming Donald Trump road.

0: welcome. You're watching Nationwide at 6 with me, Raisha Sehgal, and we're tracking the Kolkata warehouse horror. Let's tell you more about that. A tragedy in Kolkata where three labourers have been killed after a warehouse roof collapse. 21 rescued so far, 18 injured and under treatment. 12 to 15 people are believed to be trapped and they have been connected with the NDRF. Well, apart from that, four columns of East Command, Indian Army, have also been swiftly launched for the search and rescue operation in central Kolkata's Taratala neighbourhood. The West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari, he reached the spot and he said that the state government stands firmly with them in this hour of unimaginable grief. And he further said that we will extend all possible support to them. Rescue and relief operations are currently being carried out on a war footing. The Army, NDRF, SDRF, Kolkata Police and KMC, they are jointly conducting the rescue operations to ensure that every trapped worker is brought to safety as quickly as possible. Take a listen to all the reactions coming in.
1: 12:07 बजे दोपहर हादसा हुआ, 12:45 एक से काम शुरू कर दिया। कलकत्ता पुलिस, सिविल डिफेंस और केएमसी के लोग 1:30-2 बजे से ही वहाँ जॉइंट सीपी, केएमसी कमिश्नर, सीपी, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के लोग मॉनिटरिंग करना चालू कर दिया। मैं और सीएसबी 2 बजे से चालू कर दिया मॉनिटरिंग। 2:30 बजे आर्मी का साथ बात हो गया, 3:20 में आर्मी एनडीआरएफ जाकर संभाल लिया, पूरा जॉइंट किया, काम हुआ है, काम अभी भी चल रहा है। अभी भी तो पूरा फाइनल कंक्लूजन आना ठीक नहीं होगा। अब तक 21 रिकवर हुआ, उनमें 3 आउट ऑफ 21, 3 डेथ, 18 अलाइव, 9 आर ऑनगोइंग अंडर ट्रीटमेंट इन एसएसकेएम हॉस्पिटल।
2: सब इलीगल है, टीएमसी का सालों से ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन लगा के रखे, बाघ उसका तो हिसाब बाद में होगा, अभी एक ही प्रायोरिटी है।

0: लेबोरेटरी ते रिपोर्ट आई है और वो गलत है।
1: गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसमें दो लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है। अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एड हॉक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है जो, और अंकित नाम का बंदा है। तो दूसरा हमारे पास, इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है। इसमें
2: अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद ये कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो भी असली है, कोई AI जनरेटेड नहीं है, और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया।
3: पंजाब आज इतिहास के सब तो गंभीर नैतिक संविधानिक संकट विचों निकल रहा है। श्री अकाल तख्त साहब वालों गुरु दोखी अते पंथक विरोधी ऐलाने जाने तो बाद भी भगवंत मान कुर्सी नहीं नाल चुंबड़े हुए ने। मुख मंत्री पंजाब वालों पहला साडे गुरु साहिबाना का अपमान किया गया अते बाद विच साडे सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त की बेअदबी की गई। असी पहला भी कहा सी कि मुख्यमंत्री नूं अपना अस्तीफा दे के अकाल तख्त साहब के सामने भुल बख्शा लेनी चाहीदी है, पर मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मनण की बजाय सारिया नैतिक कदरां कीमतां नूं छिके ठग दिता।
4: भगवंत मान दी भावे हुण वीडियो आई है उहदे नाल माहौल बहुत गर्म हो गया ते असलियत सामने आ गई है, लेकिन यह बंदा पहलां तों ही सिख कौम सिख धर्म गुरु साहिबान दा निरादर करन दा आदी है। ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
5: ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਟੈਂਪਰਰੀ DGP ਆਪਣੇ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, SP साइबर क्राइम जशनदीप, उनको इस्तेमाल करके एक फेक रिपोर्ट तैयार कराएं। FIR दर्ज हो ही है, आज है गुड़गांव पुलिस ने कर दिया, मैं धनवादी हूं और मैं चाहूंगा कि इनकी इमीडिएटली अरेस्ट होए, भगवंत मान इस्तीफा दे।
6: जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी, तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, AI से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की, भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने दो इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना AI से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी पंथ विरोधी करार दिया। उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर रहे।
7: वीडियो की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। अब उसके बाद बौखलाहट में भाजपा हाथ पैर मार रही है। अगर फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब की पुलिस पंजाब में बनवा लेती, उसको गुड़गांव आने की क्या जरूरत थी।
8: All right, you heard all the reactions coming in from all the ministers regarding the Bhagwant Mann sacrilege controversy. Let's now tell you more about the video controversy and what exactly happened. First up, the chief minister allegedly disrespected Sikh religious imagery. Apart from that, another accusation is that the chief minister denied allegations and he rather claimed that

0: Lucknow fire. They've also inspected the building and they've also started the examination, perhaps examining all possible safety lapses. The focus is also on the building itself. It was a fresh demolition notice which has now been issued for the fire-hit structure, even as questions grow over why earlier action failed to stop its operations. Why a reaction at this point of time, which has claimed at least 15 lives? Investigators are examining the building's history, alleged violations, and a demolition order that existed years before the tragedy. Meanwhile, the legal crackdown is also gathering pace. All four accused have now been arrested in connection with the Lucknow fire tragedy, and they have now been sent to judicial custody as well.
1: जैसे भी लखनऊ में जो अग्निकांड की घटना घटी है, जिसमें ढेर सारे बच्चे कैजुअल्टी हुए हैं, और उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से सख्त निर्देश है. और ऐसा नहीं कि ऐसी घटना घटी है तो ही हम लोग कोचिंग संस्थान का ऑडिट कर रहे हैं. हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं. संस्थान को फायर ऑडिट नहीं करवा रहे हैं या फायर शक्ति सिस्टम
2: निकालते हुए
1: उनको नोटिस दी जा रही है, उनको सुझाव दिया जा रहा है, एक टाइम पीरियड भी दिया जा रहा है. टाइम पीरियड के अंदर जो फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं तो उनके बड़ी बड़ी कार्रवाई के लिए लखनऊ की दुर्घटना या अग्निकांड बहुत ही दुखद है.
3: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं. ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था. ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है. आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था.
4: और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है. भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई. लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है. हमने आपने देखा जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई. इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई. और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी.
0: Well, we're slipping into a very short break. I'm right back. News updates continues here on NDTV 24/7.

0: We want that any decision in this case should be taken as per the provisions of the Constitution. And he argued that constitutional provisions are absolutely clear. There cannot be any ground for Speaker to give any kind of legal recognition to a group of MPs who have defected from the original party, because as per the law, two-third defection becomes only valid when the entire party splits. But in this case, only because six MPs have left Shiv Sena Uddhav Gut cannot be the ground to give them any recognition as per the law. Rahesha.
1: Of course, absolutely, Himanshu, because with the six UBT rebel MPs now joining the Eknath Shinde camp, the Eknath Shinde camp now has 13 MPs, of course, reduces the strength of the UBT Shiv Sena. But thanks for sharing that update with us, Himanshu. Okay, shifting our focus to another big story. Mumbai is once again battling the fury of monsoon. Heavy rainfall since early morning has left several parts of the city waterlogged. Authorities have issued advisories for commuters as vehicles struggle through flooded roads and low-lying areas report inundation as well. The downpour also led to multiple rain-related incidents across the city. In Dadar, a tree fell on a parked car following strong winds and heavy rain, causing damage to the vehicle. Meanwhile, in Vikhroli West, a retaining wall adjacent to a residential building collapsed. The India Weather Department has warned of continued rain, thunderstorms and gusty winds across the city, with a weather alert remaining in place as well. In fact, a man fell into an open manhole right in front of the mayor's office there. Take a look.
2: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है. फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूँ. आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है, उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है. आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से इसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे गिरा. जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे. सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है, आप उस दौरान कहाँ थे और जब ये डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
3: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था. और वो गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना, मेरे को थोड़ा नींद लग गया था. जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला.
4: द मोस्ट अवेटेड मॉनसून सीजन हैज ऑफिशियली एंड फाइनली बिगन इन मुंबई. बट मुंबई, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर फुल ऑफ वाटर इन इट्स फर्स्ट रेन ओनली. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट सायन गांधी मार्केट एरिया. दिस इज एन हॉटस्पॉट एरिया. इवन इफ इट रेन्स फॉर अ लिटिल वाइल, दिस एरिया गेट्स फ्लडेड विद वाटर. एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज सेम बिकॉज इट इज रेनिंग इन मुंबई सिंस मॉर्निंग. इवन येस्टरडे इट वॉज रेनिंग, बट टुडे सिंस मॉर्निंग इट्स रेनिंग हेवीली. एंड दिस वेरी हॉटस्पॉट एरिया ऑफ मुंबई, दैट इज द सायन गांधी मार्केट एरिया, इज फ्लडेड with water. You can see right in front of me a BST bus is shut down. In front of the BST bus a tempo truck is also shut down. Also the traffic is jammed because of this waterlogging. The BMC had stated that this year Mumbai will not face waterlogging because the nalas have been cleared up, but we can see the reality check over here.
5: यहाँ पे हिंद माता में खड़ी हूँ. यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे पाँच है, यहाँ पे छः पंप फुल प्लेज में यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं. पूरा रोड का जितना भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से जाने का काम चालू है. लेकिन इसके साथ में जो कचरा आ रहा है जाली के ऊपर, उसको भी निकालने का काम पूरा यहाँ पर चालू है. आपने यहाँ पर देखा रेलवे की जो कूटर है, यहाँ से भी निकाल के कचरा लेके जाने का काम चालू है. पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो चाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं.
6: इट इज़ कंटिन्यूसली रेनिंग सिंस ओवरनाइट एंड द सिचुएशन इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मुंबईकर्स. वी आर प्रेजेंट हियर एट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इन द विले पार्ले एरिया राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट. एंड यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, one of the important highway which is connecting suburban Mumbai to south Mumbai, and you can already see the congestion, the traffic congestion on the highway clearly. And this is an important route which connects suburban Mumbai to south Mumbai, and Mumbaikars are out on the road traveling towards their offices, and this route becomes very prominent and important as per the updated warning by IMD that orange alert is being issued for the next 3 hours, and more importantly, precaution needs to be taken by the Mumbaikar is an advisory issued. More importantly, the low-lying areas, eastern and western suburbs and other pockets have already received, are already waterlogged at this given point of time, and you can clearly see the traffic congestion.
1: Meanwhile, a political showdown has started on waterlogging in Maharashtra after rainfall. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thackeray has now launched a sharp attack on the Maharashtra government, alleging a complete lack of monsoon preparedness and accusing the BJP-led administration of neglecting urban infrastructure. Thackeray said the focus should be on governance and not politics. Joining the criticism, NCP SP also questioned the preparedness of the civic administration, saying that the BMC appeared completely unready to handle the situation that everyone is facing in Mumbai.
7: पंपिंग पंप के यहाँ पे ही खड़ी हूँ, घर पे बैठ के नहीं होता है। मैं वापस एक बार बोल रही हूँ, हमारी किशोरी ताई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे ले रही है। आप लोक प्रतिनिधि हो, आप लोगों को मुंबई करने चुन के यहाँ पे भेजा है, घर पे बैठ के काम नहीं होता है, बारिश में भीगना पड़ता है, आना पड़ता है, रोड में आना पड़ता है। हमारी मीडिया के प्रतिनिधि भी आज रोड पे खड़े, इस तरह से काम होता है। मुंबई करने अभी तक का मेयर को इस तरह से देखा नहीं है, नहीं मीडिया ने देखा है। यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, पूरे 4 मंथ्स मैं सिर्फ लोगों को बारिश में रोड पे ही दिखने वाली हूँ। मेरे जैसा काम करने की ताकत रखो, घर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंबई का पूरा आढ़ावा मत लिया करो।
0: Yeah, I heard the mayor of Mumbai saying that, you know, you shouldn't do politics regarding this monsoon issue that is going on, you know, Mumbai submerged, flooding around everywhere. The question is not politics, it's about governance. Had the BMC worked on it before the monsoons, we wouldn't have been in this situation right now. You know, statements like, you know, the opposition shouldn't be sitting in AC rooms and making statements come out in the open. We are all out in the open. We also traveled. We are facing the same situation like any common Mumbaikar. We are also Mumbaikars. But the point here is the BMC sat and did nothing before the monsoons. The incumbent government did nothing in the, you know, for the preparation of the monsoons. And now they are blaming everybody else. What were they doing when they know that monsoons are going to arrive?
8: जो आज मेयर है मुंबई की रितु तावड़े, उनको ढाका ज्यादा दिखता है, बांग्लादेश ज्यादा दिखता है, मुंबई और महाराष्ट्र दिखता नहीं है। जो आज मेयर है मुंबई की रितु तावड़े, उनको ढाका ज्यादा दिखता है, बांग्लादेश ज्यादा दिखता है, मुंबई और महाराष्ट्र दिखता नहीं है।
9: इन लोग ने सालों साल जो की हुई गंदगी है
10: जी।
9: उसको साफ करने को वक्त लगेगा थोड़ा। अभी आए हम लोग महापौर, ये सालों साल की गंदगी है, थोड़ा साफ करने को वक्त दे दीजिए, इनसे अच्छा काम करके बताएंगे।
1: In other news, will there be uniform civil code in Maharashtra soon or not? The debate over the UCC is turning into a major political flashpoint in Maharashtra. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde has strongly backed the idea of a uniform civil code, saying that it was supported by Balasaheb Thackeray. Shinde said that there is a need for UCC in the country, adding that everyone should get equal justice. UBT has now slammed Mahayuti and said that the matter should be discussed on merit. He called for uniformity across all laws, especially in accountability. He added that governance too must be free of bias and ensure equal application of laws.
11: मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है समान नागरिक कानून, ये हमारे बालासाहेब ठाकरे जी की पहले से भूमिका रही है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सकारात्मक है और शिवसेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सकारात्मक भूमिका हमारी है। देश में समान नागरिक कानून होने की आवश्यकता है, सभी को समान न्याय और मिलना चाहिए, ये भूमिका शिवसेना की है।
12: देखिए जो जो हमारे देश में संविधान मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, दो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान मानता है, जिस संविधान में यूसीसी का मेंशन है, तो फिर अगर आप संविधान मानते तो यूसीसी का विरोध कैसे कर सकते हो? फिर तो आप शरिया कानून आपको चाहिए, तो वह हमारे देश में लागू नहीं है। तो दो दो देश में शरिया कानून है, वहां पे निकल जाना चाहिए।
8: बात यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे पहले तो मेरिट पे हो, उसी पे चर्चा करेंगे हम। दूसरी बात सबसे अहम यही है कि यूनिफॉर्मिटी सारे कानून में होना चाहिए, फिर अगर ईडीआईटी सीबीआई किसी के पीछे जा रही है तो कितने सत्ताधारी पक्ष के लोगों पे गई है और कितने विपक्ष गई है, इसमें भी बात हो, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी आए।

0: आप कोई भी भ्रष्टाचारी लेते हो, सीएम बनाते हो, डीसीएम बनाते हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। और तीसरी बात, अगर डेवलपमेंट फंड्स की बात हो, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी है।
1: With that, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: They are calling this an imposition of vegetarianism and asserting that Bengal will not accept it. The outrage first came from Team Mamta and was later seconded by their rival camp's face, Ritubrata Banerjee. Listen in.
1: ये गलत है कि एग में ही प्रोटीन रहता है और उसका कोई वेजिटेरियन अल्टरनेटिव नहीं है. आज अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली से लेकर बहुत सारे विश्व के फेमस एथलीट हैं जो एक्टिव हैं, उनका पूरा लाइफस्टाइल उनका वेजिटेरियन है. और बड़े बड़े लोग, इवन आजकल तो ट्रेंड हो गया है विदेशों में कि जो फॉरेनर्स हैं वो वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, वीगन लाइफस्टाइल अपना रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. और आप देखिए, हमारे इस्कॉन के 4 करोड़ भक्त विदेश में हैं और 4 करोड़ भक्त भारत में हैं. तो ये जो 8 करोड़ लोग हैं वो बहुत आपको स्वस्थ नजर आएंगे.
2: ये मिड डे मील में ये अंडा एक ऐसा चीज है, ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं. ये न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए, बच्चे को साइकोलॉजी में ये अंडा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है. तो अगर इस्कॉन मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उसको तो भेज करना पड़ेगा. तो बच्चे लोगों का मेनू नॉन वेज से भेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा. इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से, हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये डिसीजन रिकॉन्सिडर कीजिए.
3: हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा मैंने चला आ रहा है. तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है. तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है. ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है. हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं.
0: Time now for a very quick break. On the other side, we talk about a story that's on everyone's lips across the country. A young couple who were headed for a wedding, but that whole love story ended in murder. The question all of India is asking is there something fundamentally broken in our society? Stay tuned.

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Wednesday night. I'm back on the show. Thank you very much for all of your messages. I'm Shiv Arur. We've got a power-packed show tonight on Wednesday. Let's get you straight to the headlines. The crime story that has the entire country shaken. Details of Ketan Agarwal's murder conspiracy revealed. Fiancé Sia Goyal and alleged lover Chetan met at a cafe hours before the 26-year-old's death. Over 2,000 hours of calls exchanged between the two co-accused, who are now in police custody. Three labourers killed as warehouse roof collapses in South Kolkata. West Bengal government blames the Tridamool for allowing illegal construction in many parts of the state. New twist in Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's sacrilege video case. Gurugram police register case for alleged forensic manipulation of video. BJP demands Bhagwant Mann's arrest. Man stabbed to death in a moving Mumbai local train after dispute over closing the compartment door. 30-year-old accused arrested from Kurla area of Mumbai. India and the US conclude bilateral trade talks in Delhi after dialogue with Piyush Goyal. US trade representative says India and the US will join hands for trade, tech and AI, adds exciting opportunities lay ahead. And coming up on the show tonight, our lead story is on the crime, like I said, that has completely captivated the entire country. Why did Sia kill her fiancé if she didn't want to get married to him? Is the question we're asking, even as more hair-raising details spill out. Ketan's father, appearing in his first television interview, joins me live in just a few minutes from now. Our second story tonight is Trisha, the girlfriend of Chief Minister Vijay in Tamil Nadu, triggering an unseemly storm on social media after she wished Vijay on his birthday. What is this all about? Is Trisha being used simply to attack the new Chief Minister of Tamil Nadu? Let's get started with the top story tonight. This latest crime tale that has the Indian public hooked is particularly unnerving because of one simple question, my friends. Why? Why would 22-year-old Sia Goyal, daughter of a pan masala baron, choose murder over a conversation? If she didn't want to marry her 26-year-old fiancé, builder Ketan Agarwal, why couldn't she have told him? She could have told her family. She could have faced anger, disappointment, drama, pressure, even a family fallout, perhaps. None of those things are easy. Nobody outside a family truly knows the weight of the expectations and pressures operating within it. But murder? According to investigators who are still looking into this case, this wasn't a crime of passion, frustration, or momentary madness. It was a carefully planned homicide where Sia lured her fiancé Ketan to Lohagarh Fort near Pune and pushed him off a cliff, hoping it would pass as a trekking accident. A deliberate decision to remove a person rather than confront an inconvenient reality. That is what makes this case so chilling. Urban India is especially horrified because of the people like us quality of this entire story. Two young people with Instagram accounts, social media suggesting they were looking forward to marriage. They had a trip planned to Bali for a pre-wedding photo shoot. Affluent business families, the familiar mix of prestige, reputation and family expectations. It all looks recognizable until it suddenly does not. Women across the country watching this case are asking the same question. Why couldn't Sia Goyal simply say no and walk away from this planned marriage? Women are deeply acquainted with the drama that their choices can trigger, whether within family or society. But to see murder as the only way through, nothing adds up. If the allegations are true, Sia Goyal is a heartless murderer. But locking her away will not answer the larger question. Because if you, a young woman, could come to see murder as preferable to an uncomfortable conversation, then we also need to ask what kind of pressures, expectations and values can produce that mindset in the first place? That question should disturb us tonight as much as the crime itself.
1: It began as a love story headed for marriage, and now investigations reveal it ended in a meticulously planned murder. Ketan Agarwal's fiancé, Sia Goyal, and her alleged lover, Chetan Chaudhary, have been arrested for allegedly pushing him to his death from Pune's Lohagarh Fort. According to investigators, Sia and Chetan first met at a Diwali party and soon grew close. Police claim Sia was unwilling to go ahead with her marriage to Ketan and allegedly began plotting with Chetan to remove him from her life. The duo spoke for more than 2,000 times over the last 6 months, spending nearly 238 hours on calls. The conspiracy unfolded over multiple visits to the fort. Ketan and Sia reportedly went trekking there on 31st May, 14th June and 18th June. Investigators claim the first attempt to kill Ketan took place on the 14th of June. Sia allegedly tried to push him off the fort, but when the plan failed, she claimed she had seen a snake. Days later, the conspirators made their final preparations. On the day of the murder, Sia and Chetan reportedly met at a cafe, where they allegedly discussed the route and identified the exact spot from which Ketan would be pushed into the gorge.
2: We are at that very ground zero on the treacherous spot where Sia Goyal, the accused who was set to get married to the deceased 26-year-old Ketan Agarwal, she pushed him from this very spot, and this is where Ketan was pushed down to his death. And not just Sia, but also we know that her boyfriend Chetan was too present at the spot wherein he was the one who too had planned the entire killing.
1: A breakthrough came when investigators examined CCTV footage from Lohagarh Fort. A man wearing a monkey cap, hoodie and mask despite the scorching heat caught their attention. The footage showed him allegedly communicating with Sia through hand signals, giving the investigation a new direction. Initially, the case was treated as an accidental death, but Ketan's family, especially his sister, remained unconvinced. 4 days after his death, Sia visited the family to offer condolences. During the interaction, Ketan's sister questioned her about the sequence of events and reportedly noticed inconsistencies. The family's suspicions prompted police to reopen the probe. Meanwhile, accused Chetan Chaudhary's uncle has rejected the allegations.
3: हम बोल देना चेतन का उसमें चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है चेतन एकदम निर्दोष
4: तो उसको फंसाया जा रहा है क्या चेतन को इसमें फंसाया जा रहा है
1: With the accused now in police custody, investigators are piecing together what they describe as a chilling conspiracy behind Ketan Agarwal's death. With Sujata Dwivedi and Akshay Khutkelkar, Bureau Report, NDTV.
0: And I quickly want to show you where this crime took place. It's the famous Lohagarh Fort just outside the city of Pune. Absolutely stunning place with sheer ramparts that have these long drops. And it was off one of these walls where NDTV filmed this entire fort that Ketan was pushed to his death. Just imagine these long cliffs where Ketan fell to his death. He was pushed not once, he was pushed twice, and he still went back only to meet his end. So the question I ask is, why has this story shocked us so much? And I have a few thoughts for you tonight. Sia apparently chose murder over simply saying no to marriage with Ketan, even though there were so many videos of them looking like they were looking forward to getting married. There is an unsettling implication that there was pressure from Sia's family. We don't know that just yet. All avenues were less desirable to Sia than planned murder of the man her family wanted her to get married to. Everyday quality of Sia-Ketan relationship, the situation is just familiar to so many of us, and that's the reason why it is especially unsettling and disturbing. Allegations that Sia's family could be involved in the conspiracy are especially unnerving. So tonight, here are the unanswered questions in the death of Ketan Agarwal. On the 18th of June, why didn't Sia call for immediate help after her fiancé Ketan fell, after she allegedly pushed him? Why did Ketan continue visiting the fort despite being pushed on the 14th of June? At that time, Sia had said she had seen a snake and she had pushed Ketan in order to protect him. Seems like a bit of a rich story, but he believed it and he went back to the fort when she called him there. Did either Sia or her boyfriend Chetan try to destroy any evidence? Other than the Lohagarh fort, were there other attempts to isolate Ketan in order to commit this kind of a horrible crime? Were Sia Goyal's parents aware that she did not want to marry Ketan? These questions do not have answers. But I did have a small chat with Vishal Agarwal, the father of Ketan, the fiancé who was pushed by Sia. This is his first interview on television so far. And joining me live for the first time on television since the tragic death of his son, Ketan, is Ketan's father, Vishal Agarwal. Vishal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal, Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter claims samne aaye hain, lekin main aapse poochna chahta hu ki aapke mutabik Ketan ke saath Lohagarh fort mein kya hua tha? Kya hua tha, Vishal ji?
5: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई. उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में.
0: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को. क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
5: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके. लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हक कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो.
0: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी, ने सस्पिशन पहले जताया था? उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
5: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं.
0: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है? क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
5: कभी भी नहीं था. हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे. वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी. रोज़ एक दो फ़ोन उसके आते ही थे.
0: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
5: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी.
0: केतन क्या बोलता था इस रिलेशनशिप के बारे में विशाल जी? क्या उसको कुछ भी शक था कि सिया खुश नहीं है और ये शादी नहीं चाहती थी?
5: उसने कभी बताया नहीं ना, उसको पता ही नहीं था.
0: आपके मुताबिक
5: ऐसा हुआ ही नहीं ना सर, उसने कभी बताया ही नहीं उसको, ना उसको पता था ये सब चीज़ें. हाँ, कभी कभी उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते थे, तो वो मेरे को बोलता था कि पापा उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते
0: वेटिंग आती थी मतलब?
5: जब केतन सिया को कॉल करता था तो उसका फोन बिजी आता था, हमेशा वेटिंग पे रहता था।
6: तो उसको शक हुआ कि कोई और है सिया की लाइफ में, ऐसा कुछ कहा केतन ने आपसे?
5: हाँ, ऐसा नहीं कहा, नहीं, सिर्फ वो बोलता था बहुत वेटिंग आता है तो किससे बात करती है इतना। उसने उसको पूछा भी था तो बोले दोस्त है, दोस्तों के फोन आते हैं ना तो उनसे भी बात करना पड़ता है।
6: आपके मुताबिक सिया ऐसे क्यों
5: और आजकल किया? तो सब बच्चों के दोस्त होते ही हैं ना, वो
6: नहीं,
5: तो
6: बिल्कुल
5: से बातें करते हैं।
6: बिल्कुल विशाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक आप केतन के पिताजी
5: सर, मुझे
6: मैं आपको ये सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ कि आपके दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, आपके हिसाब से ऐसे क्यों किया होगा सिया ने?
5: सर ये तो शॉकिंग है, समझ में ही नहीं आ रही ना बात। देखो बात इतनी छोटी सी थी, अगर उसका कहीं पे अफेयर है किसी के साथ वो किसी को भी बता सकती थी, चलो बताना भी नहीं था तो उस लड़के के मोबाइल से एक व्हाट्सएप उन दोनों की फ़ोटो किसी को भी कर देती थी तो हमारे साइड से एक मिनट में रिश्ता कैंसिल हो जाता था। कोई ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि उसको शादी करनी है।
6: आप उस परिवार को जानते हो विशाल जी, क्या क्या सिया पर कुछ प्रेशर था, ऐसा कुछ था कि उसको एक नो वे आउट टाइप का कंडीशन समझा?
5: अब तो ऐसे ही लग रहा है ना सर कि उस सिया पे उसके मम्मी डैडी और उसके बुआ का प्रेशर होगा, क्योंकि उनके घर में उसके बुआ का रेनो नरेंद्र मित्तल इनका बहुत चलता है और उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, और ये रिश्ता भी उन्होंने ही कराया था रेनो नरेंद्र मित्तल।
6: क्योंकि ऐसा लगता है कि सिया शादी से इनकार कर सकती थी विशाल जी, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है कि कोई भी नो बोल सकता है, जैसे आपने बताया एक फ़ोटो सामने ला सकता है कि उनका अफेयर है, उनका बॉयफ्रेंड है, और कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ और उसके बाद लाइफ कैरीज ऑन, ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था उस परिवार में कि वो ऐसे स्थिति में आ गए?
5: सर पता नहीं, क्या तो उनका कुछ प्लानिंग होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला, शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाए, अभी तक तो हमें पता चला नहीं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।
6: आप कब तक उस परिवार के संपर्क में थे इस हादसे के बाद? क्या आपने उनसे बात की, प्रयास किया बात करने के लिए उस परिवार से?
5: जी नहीं, हादसे के बाद सेकेंड डे फूल उठाने के कार्यक्रम पे वो लोग आए थे दोपहर में हमारे घर पे, बस उतने ही, तभी तक हम उनके संपर्क में थे, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
6: आपकी बेटी विशाल जी संजना, जो जिसको पहले से शक थी कि कुछ गड़बड़ है इसमें, वो अब क्या कहती हैं आपसे, क्या कहती हैं अब?
5: पहले से मतलब हादसा हुआ उस दिन से शक था, उससे पहले नहीं था। हादसा हुआ उस दिन से क्योंकि केतन की वैसी आदतें नहीं थे ना कि कहीं वो क्लिफ पे जाके रुक जाए, एज पे जाके रुक जाए, ये उसकी आदतों में नहीं था।
6: जब किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें?
5: सर गड़बड़ का तो शक हुआ लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया, वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट को शक क्या करेंगे, लॉस्ट को तो ढूंढा बहुत सब जगह, घूम फूर के पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसमें ऐसा शक आने जैसा, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा शक नहीं कैसे आएगा ना सर।
6: इस इंसिडेंट के पहले आपका लास्ट बातचीत केतन से कब हुआ, और क्या था सर? बिल्कुल नॉर्मल था, उसके मन में कुछ था, क्योंकि उसके बिल्कुल कुछ दिन पहले वो गए थे इसी जगह पर जहाँ से वे ऑलमोस्ट गिरे थे।
5: 17 को शाम को 11 बजे तक वो मेरे साथ था। बात करते हुए तो नॉर्मल था, ऐसा कोई उसमें डिस्कशन का या ऐसा।
6: विशाल जी, सिया और चेतन अब अरेस्ट हो चुके हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए आपकी तरफ से?
5: सर, मेरा तो अभी भी मेरा न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की है, और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पूरे पहले जड़ में जाए, धागे दोरे निकालें कि इसमें और किसी का हाथ है क्या, क्या है क्या नहीं। अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है तो उसको भी उसके अंदर गुनहगार बना के, और इनको जल्द से जल्द, मैं चाहूँगा कि इनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि आज मेरा 26 साल का बेटा, उन्होंने इतने छोटी सी बात के लिए उसकी हत्या कर दी। अगर शादी नहीं करनी थी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर, एक सेकेंड में कैंसिल हो सकती है, इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, लेकिन इनकी थिंकिंग इतनी ये थी कि उन्होंने सीधा मेरा बच्चा मार दिया।
6: विशाल जी, क्या आपको लगता है कि सिया के परिवार सिया की जो रिलेशनशिप थी चेतन के साथ, उसके बारे में पता था?
5: होगा ना सर, कैसे कैसे नहीं होगा, आप मुझे बताइए, आज हर एक के घर में बच्चे होते हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, किस माँ बाप को नहीं पता होता? ठीक है, 100% नहीं होता है तो 30-40-50% तो पता होता है ना, किससे बात कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे।
6: आखिरी सवाल विशाल जी, अभी तक जो प्रोब हुआ है और हो रही है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या कुछ और होना चाहिए?
5: सर, जब तक उनको सज़ा नहीं होती, जब तक तो मैं सेटिस्फाइड या संतोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सुख चैन तो छीन लिया मेरे बच्चे को मार के। एक ही लड़का था मेरे को, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया, तो मैं उस बात से संतुष्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आज सरकार या न्याय व्यवस्था काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है।
6: विशाल अग्रवाल, NDTV से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।
0: The most unsettling aspect of this entire story is that if everything we are seeing is correct, and remember Siya Goyal has confessed in front of the police, then it basically means that she saw murder of her fiancé as the least undesirable option to get out of this entire situation. That is the most alarming part. Joining me live to at least try and make some sense of what we're looking at, Meghna Pant is an author and journalist, R.T.C. Rajaratnam is a psychologist and author, Satya Mole is an advocate with the Supreme Court and has handled similar cases in the past. I'd request all of you to keep your answers brief because we've got limited time, so I can take multiple questions. Meghna, to you first, the central question, you know, if you didn't want to marry a person, why not just say no? So what if there would be a little bit of family drama? What are you making of this?
7: It's absolutely horrific, and there's no way to condone what Sia has done and what her lover have done in collusion. And we also, Shiv, I think, need to stop pretending that the parents are innocent bystanders in arranged marriages. They're often the CEOs of the entire operation. They're the ones who are shortlisting candidates, negotiating terms. So I think what we need to really do is that stop putting your children in such a dilemma that they don't have the freedom to choose. The fact that this girl thought that she can't say no to a marriage proposal and instead chose murder is really very reflective of the fact that there was always clearly a communication gap between the parents and her. And I read somewhere that she was afraid of disappointing her parents, but you're not afraid to commit murder, which is going to come up in the public sphere. I mean, that doesn't even make any sense, to be honest.
0: Anita, what were Sia's other options that she found murder to be

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस।

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: देश का टायर जेके टायर
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
2: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्यन मसाला।
3: NDTV टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज रीच फॉर द सिक्स्थ ईयर इन अ रो। Audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
4: What seems settled

0: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का दे के। लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
1: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था? उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
0: जी, क्योंकि जब जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
1: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस
0: जी
1: अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है? क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
0: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे। वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी, रोज़ एक दो फ़ोन उसके आते ही थे।
1: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
0: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी।
1: केतन क्या बोलता था इस रिलेशनशिप के बारे में विशाल जी? क्या उसको कुछ भी शक था कि सिया खुश नहीं है और ये शादी शादी नहीं
0: नहीं,
1: चाहती
0: उसने
1: थी?
0: कभी बताया ही नहीं ना, उसको पता ही नहीं था।
1: आपके
0: ऐसा
1: मुताबिक
0: हुआ ही नहीं ना
1: जी,
0: सर, उसने कभी बताया ही नहीं उसको, ना उसको पता था ये सब चीज़ें।
1: आप
0: हाँ, कभी कभी उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते थे, तो वो मेरे को बोलता था कि पापा उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते हैं।
1: वेटिंग आती थी, मतलब
0: जब केतन सिया को कॉल करता था तो उसका फ़ोन बिज़ी आता था, हमेशा वेटिंग पे रहता था।
1: तो उसको शक हुआ कि कोई और है सिया की लाइफ में, ऐसा कुछ कहा केतन ने आपसे?
0: हाँ, ऐसा नहीं कहा, नहीं, सिर्फ वो बोलता था बहुत वेटिंग आता है, तो किससे बात करती है इतना। उसने उसको पूछा भी था, तो बोले दोस्त है, दोस्तों के फ़ोन आते हैं ना, तो उनसे भी बात करना पड़ता है।
1: आपके मुताबिक सिया ऐसे
0: और
1: क्यों
0: आजकल
1: किया
0: तो सब
1: सर?
0: बच्चों के दोस्त होते ही हैं ना, वो
1: नहीं
0: तो
1: नहीं
0: एक दूसरे से
1: बिल्कुल
0: बातें करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: विशाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक आप केतन के पिताजी
0: सर,
1: हैं,
0: मुझे
1: मैं
0: मुझे
1: आपको
0: तो
1: ये सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ कि आपके दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, आपके हिसाब से ऐसे क्यों किया होगा सिया ने?
0: सर, ये तो शॉकिंग है, समझ में ही नहीं आ रही ना बात। देखो, बात इतनी छोटी सी थी, अगर उसका कहीं पे अफेयर है किसी के साथ, वो किसी को भी बता सकती थी। चलो, बताना भी नहीं था, तो उस लड़के के मोबाइल से एक व्हाट्सएप उन दोनों की फ़ोटो किसी को भी कर देती थी, तो हमारे साइड से 1 मिनट में रिश्ता कैंसिल हो जाता था। कोई ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि उसको शादी करनी ही है।
1: आप उस परिवार को जानते हो विशाल जी, क्या क्या सिया पर कुछ प्रेशर था, ऐसा कुछ था कि उसको एक नो वे आउट टाइप का कंडीशन समझा?
0: अब तो ऐसे ही लग रहा है ना सर कि सिया पे उसके मम्मी डैडी और उसके बुआ का प्रेशर होगा, क्योंकि उनके घर में उसके बुआ का रेनो नरेंद्र मित्तल, इनका बहुत चलता है और उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। और ये रिश्ता भी उन्होंने ही कराया था, रेनो नरेंद्र मित्तल।
1: क्योंकि ऐसा लगता है कि सिया शादी से इनकार कर सकती थी विशाल जी, एक नॉर्मल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है कि कोई भी नो बोल सकता है, जैसे आपने बताया एक फोटो सामने ला सकता है कि उनका अफेयर है, उनका बॉयफ्रेंड है, और कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ, और उसके बाद लाइफ कैरीज ऑन, ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था उस परिवार में कि वो ऐसे स्थिति में आ गए?
0: सर पता नहीं क्या, तो उनका कुछ प्लानिंग होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला, शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाए। अभी तक तो हमें पता चला नहीं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।
1: आप कब तक उस परिवार के संपर्क में थे? इस हादसे के बाद क्या आपने उनसे बात की, प्रयास किया बात करने के लिए उस परिवार से?
0: जी नहीं, हादसे के बाद सेकेंड डे फूल उठाने के कार्यक्रम पे वो लोग आए थे दोपहर में हमारे घर पे, बस उतने ही, तभी तक हम उनके संपर्क में थे, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
1: आपकी बेटी विशाल जी संजना, जो जिसको पहले से शक थी कि कुछ कुछ गड़बड़ है इसमें, वो अब क्या कहती हैं? आपसे क्या कहती हैं अब?
0: पहले से मतलब हादसा हुआ उस दिन से शक था, उससे पहले नहीं था। हादसा हुआ उस दिन से क्योंकि केतन की वैसी आदतें नहीं थे ना कि कहीं वो क्लिफ पे जाके रुक जाए, एज पे जाके रुक जाए, ये उसकी आदतों में नहीं था।
1: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है इसमें?
0: सर गड़बड़ का तो शक हुआ लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया, वो पता अब चल रहा है। तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट को शक क्या करेंगे, लॉस्ट को तो ढूंढा बहुत सब जगह, घूम फूर के पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसमें ऐसा शक आने जैसा, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा शक नहीं कैसे आएगा ना सर।
1: इस इंसिडेंट के पहले आपका लास्ट बातचीत केतन से कब हुआ और क्या था सर? बिल्कुल नॉर्मल था, उसके मन में कुछ था, क्योंकि उसके बिल्कुल कुछ दिन पहले वो गए थे इसी जगह पर
0: हाँ
1: जहाँ से वे
0: नॉर्मल था,
1: ऑलमोस्ट गिरे
0: सेवनटीन्थ
1: थे।
0: को शाम को 11 बजे तक वो मेरे साथ था। सेवनटीन्थ को शाम रात के 11 बजे तक वो मेरे साथ था बात करते हुए, तो नॉर्मल था, ऐसा कोई उसमें डिस्कशन का या ऐसा।
1: विशाल जी, सिया और चेतन अब अरेस्ट हो चुके हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए आपकी तरफ से?
0: सर मेरा तो अभी भी, मैंने मेरे को मेरा न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे पूरी पूरा पूरा विश्वास है, और मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की है और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पूरे पहले जड़ में जाए, धागे दोरे निकाले कि इसमें और किसी का हाथ है क्या, क्या है क्या नहीं, अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है तो उसको भी उसके अंदर गुनहगार बना के, और इनको जल्द से जल्द, मैं चाहूँगा कि इनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि आज मेरा 26 साल का बेटा, उन्होंने इतने छोटी सी बात के लिए उसकी हत्या कर दी। अगर शादी नहीं करनी थी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर, एक सेकेंड में कैंसिल हो सकती है, इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, लेकिन इनकी थिंकिंग इतनी ये थी कि उन्होंने सीधा मेरा बच्चा मार दिया।
1: विशाल जी, क्या आपको लगता है कि सिया के परिवार को सिया की जो रिलेशनशिप थी चेतन के साथ, उसके बारे में पता था?
0: होगा ना सर, कैसे कैसे नहीं होगा, आप मुझे बताइए, आज हर एक के घर में बच्चे होते हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, किस माँ बाप को नहीं पता होता। ठीक है 100% नहीं होता है तो 30-40-50% तो पता होता है ना, किससे बात कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे।
1: आखिरी सवाल विशाल जी, अभी तक जो प्रोब हुआ है और हो रही है उससे आप क्या संतुष्ट हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या कुछ और होना चाहिए?
0: सर जब तक उनको सज़ा नहीं होती जब तक तो मैं सेटिस्फाइड या संतोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सुख चैन तो छीन लिया मेरे बच्चे को मार के। एक ही लड़का था मेरे को, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया, तो मैं उस बात से संतुष्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आज सरकार या न्याय व्यवस्था काम कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है।
1: विशाल अग्रवाल, NDTV से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।
2: The most unsettling aspect of this entire story is that if everything we are seeing is correct, and remember Siya Goyal has confessed in front of the police, then it basically means that she saw murder of her fiancé as the least undesirable option to get out of this entire situation. That is the most alarming part. Joining me live to at least try and make some sense of what we're looking at, Meghna Pant is an author and journalist, Aarthi C. Rajaratnam is a psychologist and author, Satya Mole is an advocate with the Supreme Court and has handled similar cases in the past. I'd request all of you to keep your answers brief because we've got limited time, so I can take multiple questions. Meghna, to you first, the central question, you know, if you didn't want to marry a person, why not just say no? So what if there would be a little bit of family drama? What are you making of this?
3: It's absolutely horrific, and there's no way to condone what Sia has done and what her lover have done in collusion. And we also, Shiv, I think, need to stop pretending that the parents are innocent bystanders in arranged marriages. They're often the CEOs of the entire operation. They're the ones who are shortlisting candidates, negotiating terms. So I think what we need to really do is that stop putting your children in such a dilemma that they don't have the freedom to choose. The fact that this girl thought that she can't say no to a marriage proposal and instead chose murder is really very reflective of the fact that there was always clearly a communication gap between the parents and her. And I read somewhere that she was afraid of disappointing her parents, but you're not afraid to commit murder, which is going to come up in the public sphere. I mean, that doesn't even make any sense, to be honest.
2: Anita, what was Sia's other options that she found murder to be, the sort of path of least resistance to get out of whatever situation she was in? Like Meghna is saying, she didn't want to be on the wrong side of her parents, but she chose murder.
4: See, now, we can't be speculating on all of this. Let me just put it very clearly. When women were being killed for dowry, it didn't make so much noise, right? Now, when such horrific crimes are happening, we are trying to somehow make it extremely sensational. We're playing it on prime TV and stuff, prime time TV and stuff like that. So let's not try to normalize the fact that marriages were always financial equations between two families. It was never about people trying to spend their entire lifetime together. Secondly, in the past, people lived up to 40 years. So happily ever after was probably a couple of years. It was never till 80 years or 70 years like we expect right now. Mm. And the third aspect here is that I feel that somewhere we're missing the whole point, because in India, the criminals actually even get elected to parliament. The punishment that we serve to people isn't sufficient enough for them to deter them from doing such things. So let's try and see if we can ask the right questions instead of just talking about this incident here.
2: No, I will choose the questions to ask, but thank you for that suggestion, Satya. And just by the way, our campaign on dowry is a standing campaign here on NDTV. So I will not take lectures on what is sensational and what is not sensational, but I take your point, Aarthi. Satya?
4: Yeah, but at the same time, let me also add that, when you were speaking to a father who's grieving, you went on and on and on heckling him about, stuff that he
2: Aarthi,
4: didn't know.
2: Aarthi,
4: and I think that's very, very insensitive.
2: No, Aarthi, I take your point. You're my guest
4: Yes,
2: on
4: I
2: my
4: am
2: show.
4: Your guest, but I'd also like to make
2: I
4: because
2: reject.
4: It's important for some
2: No, I reject your gyan. I do not need lectures from you on how to talk to a person.
4: This is my field, and in my field, grief is a very major part.
2: I'm a senior journalist in my field, and I know how to talk to people with respect and to elicit questions. And I'm also aware that the father of a boy who just died has a certain degree of agency in talking to me. He agreed to talk to me, and I will ask the questions that I want to. I don't need those lectures. With greatest
4: respect. That's fine, but please be aware.
2: Let's move on from this. This is not between the both of us. Satya, what are your first impressions in this case? You know, the two people have been arrested now. What aspects of it could come out in this entire case, according to you? Will it go down to the whole family aspect, like Aarti raised just now?
5: Yes, definitely. I will want to talk about three aspects. No doubt, even in 2026, three aspects are strongly playing on the marriage institution, even in India as of today. That is the family, society, and the caste aspects. These are still playing very strongly on the marriage institution in India. Apart from this, there are a segment of youngsters who are nowadays having too much of influence of social media and artificial intelligence that they feel that it is easy and a simple job to fool the system and get away with it. They feel that there is an easy way out. If they want to deny something which is coming to them as a marriage or for that matter, any other arrangement, they will feel that it is such an easy job these days because they are having so much of influence. What is shown in the movies, what is available in the media, and so on and so forth. They have lost touch with the reality. They feel that they can get away with it. And finally, there is one more aspect, one more angle I would like to infuse here. There is a subject which is now very common these days with youngsters, that is a subject of body count. Let us assume she had multiple affairs prior to coming near to the subject of marriage in her family. Now, youngsters these days, it is a very common place that they have multiple affairs, but when a marriage is introduced to them, they feel that they can get away with their past. They can now catch up with the reality, enter into a marriage institution and wash off with the past. It is quite possible that this Mr. Chetan Chaudhary didn't allow
2: Sia
5: to move ahead with her life.
2: Okay, I do agree with one part of what Aarti said, which is a large part of what we are talking about is speculation because this is a live investigation. But Meghna, the point about marriages, the dynamic of, marriage and youngsters, and what Satya said about this disconnect, this kind of almost, harmful, dangerous disconnect with the realities and the consequences of your actions at play here.
3: I think we're missing the biggest story here, Shiv, that modern India really needs a serious conversation actually about arranged marriages, instead of blaming the young and their lifestyle. I think it's arranged marriages that are actually a defunct institution and we should just stop having them. Marriage no longer has the sanctity or dignity that earlier generations had. I'm speaking to more and more young people who think of marriage actually like a trap rather than a goalpost. So what parents need to stop doing is to obsess over marriage, obsess over instead your child's mental health. And today, young women and men are educated, they're financially independent, they're dating, they're traveling, they have agency, they're making their own choices. Yet the families are sitting and treating marriages like a business merger, right? Kundalis match kar rahe ho, salaries compare kar rahe ho, you're looking at the family status, you're booking the wedding venue. Are you asking the most important question that do you actually want this marriage? I'm sorry, but family pressure cannot outweigh personal choice. You're spending crores on a wedding, spend a few lakhs on background checks, allow these kids to live in for a couple of years. I mean, why is it so important that marriage is still the goalpost in any Indian girl or boy's life? It's not. We need to now start describing marriages as a meeting of minds. If we don't catch up with the modern, the way the youth are thinking, we're going to keep hearing of incidents like this and they're going to keep taking horrific forms and shapes.
2: It's almost certain that won't happen, a larger conversation around arranged marriage. But your point is very well taken. Aarti, final point to you. Do you think an investigation, an inquiry, even a conversation about this will go into the aspects that really matter, or will it, like you sort of suggested, be on the surface and then we just all move on and wait until the next crime comes along?
4: That's probably what

0: किसी का भाई किसी का बेटा, आप हर कोई हर इंडियन का भाई हर इंडियन का बेटा है, कोई हम अलग नहीं है। अगर उसके साथ ऐसा हुआ है विदाउट एनी सिक्योरिटी, वो नहीं बचा किस वजह से, रेलवे सेफ्टी कहाँ है, अंदर वाली रात के 10:30 बजे की ट्रेन, 10:10 की ट्रेन, वो लोग कहाँ है,
1: लोग पब्लिक कहाँ है, कोई तो
0: इतनी बड़ी चक्कू थी, इतनी बड़ी चक्कू
1: सपोर्ट करनी चाहिए थी ना पब्लिक ने।
2: सरकार से क्या मांग

0: And therein hangs a tale. Because now there is an explosive twist to the story. On the 15th of June, the Akal Takht stepped in and said that there is be'adbi or sacrilege that has been done by the chief minister soon after the Aam Aadmi Party government contradicted it. They said that we've got a forensic report to prove that this was AI generated, that this was morphed, that the video is fake. However, now the Gurgaon police have arrested two men following a complaint from a forensics expert named Jaspreet Singh. In a video recorded statement to the Gurugram police, Jaspreet has said that two senior Punjab police officers allegedly paid him 10 lakh rupees to tailor a forensic report on the video clip. To put it bluntly, what Jaspreet is saying that he was asked to fake a forensics report that would prove that that objectionable clip was doctored so that the Punjab chief minister could claim innocence on the basis of this report.
1: June 4, 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई कहते जी एक रिपोर्ट बनानी है भी जो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं वो उस पर बीएचपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था ठीक है काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसे मिलेंगे पहले रिसेप्शन पर मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आगे रूम में चलते हैं रूम में बैठ के बात करते हैं रूम नंबर 3000 था उनका तो उसमें 3000 में गए तो कहते ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवंत मान जी के फेवर में और उसमें जो दूसरे वो लोग हैं उनके पास दो रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट है ए आई जनरेटेड नहीं है मेरे सर ऐसा मैं मेरे को नॉलेज नहीं है मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता.
0: Now, with an issue as sensitive as sacrilege revolving around the CM himself, you can imagine the reactions. The Congress, BJP, Akali Dal, they found common cause and accused the Aam Aadmi Party of be'adbi followed by a cover-up. But the chief minister responded by questioning the timing and the veracity of this revelation.
2: पिछले कुछ दिनों तो एक बड़ी घटिया राजनीति दे हथकंडे तहत मेरिया फर्जी वीडियो जड़िया ने रिलीज़ कीतिया जा रही जदों किसी होर पासे इन्हों का बस नहीं चलता तो फिर ये धर्म वाले पास्यों मैनू बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं असी ने भी फोरेंसिक लैब तो जांच कराई हूँ फोरेंसिक लैब के जिन्हें भी मालक ने उन्होंने बीजेपी ने हमला करता क्योंकि अकाली बीजेपी कांग्रेस ही तिने इकट्ठे हो गए पंजाब कहते यार हूँ इदा करते हैं ये वीडियो वाला मामला तो अपन उल्टा पैंता जाता है ये तो आप ही नकली वीडियो जारी कर बैठे लोग तो अपन लंबे देन लग गए लोग तो अपने ते ही कमेंट कर लग गए
3: भगवंत मान दी भावे हुण वीडियो आई है उहदे नाल माहौल बहुत गर्म हो गया तो असलियत सामने आ गई है लेकिन ये बंदा पहला तो ही सिख कौम सिख धर्म गुरु साहिबान का निरादर करन दा आदी है ये बंदा गुरद्वारा साहब दे विच भी स्टेजां ते भी दारू पी के जाना इस नूं मुख्यमंत्री बने रहण दा कोई अधिकार नहीं है इस बंदे दा मूँह काला करके इनू पंजाब दे विच सत्थां दे विच घुमाना चाहिए
4: मुख्यमंत्री साहब हुण बहानेबाजी छड्डो तुरंत अपना अस्तीफा दिओ तुहानूं एक मिनट भी इस पवित्र अहुदे ते रहण दा कोई नैतिक अधिकार नहीं नाल ही मैं पुछणा चाहुंदा हाँ केजरीवाल जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
5: ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਕੀ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ.
0: All right, it's the entire opposition on one side and Aam Aadmi Party and Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, on the other. So the main question only is, who is really guilty of be'adbi? Was there really any sacrilege followed by an attempt to scuttle the issue, or has this controversy been manufactured? Has it been raked up at a time to corner the Aam Aadmi Party on this extremely sensitive issue right before the election season begins in Punjab? Joining us today is national spokesperson of the BJP, Sanju Verma. We also have with us Ravi Shivastav, a supporter of the Aam Aadmi Party, political analyst Rameek Singh Mann. But my first question is to Aam Aadmi Party spokesperson Somnath Bharti. Somnath Bharti, the BJP, the Congress, the Akali Dal, and pretty much everyone

0: विशाल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था? क्या हुआ था विशाल जी?
1: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई। उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
0: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को। क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
1: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया, सांप आया धक्का देके। लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
0: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
1: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहां से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
0: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
1: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे। वो फोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी, रोज एक दो फोन उसके आते ही थे।
0: अभी तक जो प्रोब हुआ है और हो रही है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या कुछ और होना चाहिए?
1: सर, जब तक उनको सजा नहीं होती, जब तक तो मैं सेटिस्फाइड या संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सुख चैन तो छीन लिया मेरे बच्चे को मार के। एक ही लड़का था मेरे को, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया, तो मैं उस बात से संतुष्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आज सरकार या न्याय व्यवस्था काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है।
2: Well, clearly a love story in Pune ending in a tragic murder. It has now come to fore that the accused Sia ready two plans to kill her fiancé Ketan. The first one failed, the second one killed him. And there was a plan C which was kept ready. Ketan's family alleges that Sia had formulated plan C if the Lohagarh plot failed. The family claims the third plot was that Ketan was to be killed during a family trip to Mahabaleshwar.
3: What was initially believed to be a tragic accident is now being investigated as an alleged murder. Police say Ketan Agarwal fell into a gorge at Lohagarh Fort on June 18. But his family claims the deadly fall was no accident. A day before her birthday, Sia allegedly insisted on a pre-birthday outing to Lohagarh Fort. Her alleged lover, Chetan Chaudhary, was reportedly just 20 to 30 feet behind the couple at the time of the incident. But the family

0: him. Seems like a bit of a rich story, but he believed it and he went back to the fort when she called him there. Did either Sia or her boyfriend Chetan try to destroy any evidence? Other than the Lohagarh fort, were there other attempts to isolate Ketan in order to commit this kind of a horrible crime? Were Sia Goyal's parents aware that she did not want to marry Ketan? These questions do not have answers. But I did have a small chat with Vishal Agarwal, the father of Ketan, the fiancé who was pushed by Sia. This is his first interview on television so far. And joining me live for the first time on television since the tragic death of his son, Ketan, is Ketan's father, Vishal Agarwal. Vishal ji, pehle, aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyavaad. Mera pehla sawal, Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter-claims saamne aaye hain, lekin main aapse poochna chahta hoon ki aapke mutabik Ketan ke saath लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था? क्या हुआ था विशाल जी?
1: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में.
0: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को. क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
1: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हक कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो.
0: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
1: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं.
0: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
1: कभी भी नहीं था. हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे. वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी. रोज़ एक दो फ़ोन उसके आते ही थे.
0: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
1: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी.
0: केतन क्या बोलता था इस रिलेशनशिप के बारे में विशाल जी? क्या उसको कुछ भी शक था कि सिया खुश नहीं है और ये शादी नहीं चाहती?
1: उसने कभी बताया नहीं ना, उसको पता ही नहीं था.
0: आपके मुताबिक
1: ऐसा हुआ ही नहीं ना सर, उसने कभी बताया ही नहीं उसको, ना उसको पता था ये सब चीज़ें. हाँ, कभी कभी उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते थे, तो वो मेरे को बोलता था कि पापा उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते हैं.
2: वेटिंग आती थी मतलब?
1: जब केतन सिया को कॉल करता था तो उसका फोन बिजी आता था, हमेशा वेटिंग पे रहता था।
2: तो उसको शक हुआ कि कोई और है सिया की लाइफ में, ऐसा कुछ कहा केतन ने आपसे?
1: हाँ, ऐसा नहीं कहा, नहीं, सिर्फ वो बोलता था बहुत वेटिंग आता है तो किससे बात करती है इतना। उसने उसको पूछा भी था तो बोले दोस्त है, दोस्तों के फोन आते हैं ना तो उनसे भी बात करना पड़ता है।
2: आपके मुताबिक सिया ऐसे क्यों, ऐसे
1: और
2: क्यों
1: आजकल
2: किया
1: तो सब बच्चों के दोस्त होते ही है ना, वो
2: नहीं,
1: तो
2: नहीं, बिल्कुल
1: से बात करते।
2: बिल्कुल विशाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक, आप केतन के पिताजी
1: सर, मुझे
2: मैं आपको ये सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ कि आपके दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, आपके हिसाब से ऐसे क्यों किया होगा सिया ने?
1: सर ये तो शॉकिंग है, समझ में ही नहीं आ रही ना बात। देखो बात इतनी छोटी सी थी, अगर उसका कहीं पे अफेयर है किसी के साथ, वो किसी को भी बता सकती थी, चलो बताना भी नहीं था, तो उस लड़के के मोबाइल से एक व्हाट्सएप उन दोनों की फ़ोटो किसी को भी कर देती थी तो हमारे साइड से एक मिनट में रिश्ता कैंसिल हो जाता था। कोई ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि उसको शादी करनी है।
2: आप उस परिवार को जानते हो विशाल जी, क्या क्या सिया पर कुछ प्रेशर था, ऐसा कुछ था कि उसको एक नो वे आउट टाइप का कंडीशन समझा?
1: अब तो ऐसे ही लग रहा है ना सर कि उस सिया पे उसके मम्मी डैडी और उसके बुआ का प्रेशर होगा, क्योंकि उनके घर में उसके बुआ का रेनो नरेंद्र मित्तल इनका बहुत चलता है और उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, और ये रिश्ता भी उन्होंने ही कराया था रेनो नरेंद्र मित्तल।
2: क्योंकि ऐसा लगता है कि सिया शादी से इनकार कर सकती थी विशाल जी, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है कि कोई भी नो बोल सकता है, जैसे आपने बताया एक फ़ोटो सामने ला सकता है कि उनका अफेयर है, उनका बॉयफ्रेंड है, और कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ और उसके बाद लाइफ कैरीज ऑन, ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था उस परिवार में कि वो ऐसे स्थिति में आ गए?
1: सर पता नहीं, क्या तो उनका कुछ प्लानिंग होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला, शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाए, अभी तक तो हमें पता चला नहीं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।
2: आप कब तक उस परिवार के संपर्क में थे इस हादसे के बाद? क्या आपने उनसे बात की, प्रयास किया बात करने के लिए उस परिवार से?
1: जी नहीं, हादसे के बाद सेकेंड डे फूल उठाने के कार्यक्रम पे वो लोग आए थे दोपहर में हमारे घर पे, बस उतने ही, तभी तक हम उनके संपर्क में थे, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
2: आपकी बेटी विशाल जी संजना, जो जिसको पहले से शक थी कि कुछ गड़बड़ है इसमें, वो अब क्या कहती हैं आपसे, क्या कहती हैं अब?
1: पहले से मतलब हादसा हुआ उस दिन से शक था, उससे पहले नहीं था। हादसा हुआ उस दिन से क्योंकि केतन की वैसी आदतें नहीं थे ना कि कहीं वो क्लिफ पे जाके रुक जाए, एज पे जाके रुक जाए, ये उसकी आदतों में नहीं था।
2: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें?
1: सर गड़बड़ का तो शक हुआ लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया, वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट को शक क्या करेंगे, लॉस्ट को तो ढूंढा बहुत सब जगह, घूम फूर के पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसमें ऐसा शक आने जैसा, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा शक नहीं, कैसे आएगा ना सर?

0: इस इंसिडेंट के पहले आपका लास्ट बातचीत केतन से कब हुआ और क्या था सर? बिल्कुल नॉर्मल था, उसके मन में कुछ था, क्योंकि उसके बिल्कुल कुछ दिन पहले वो गए थे इसी जगह पर जहाँ से वे ऑलमोस्ट गिरे थे।
1: को शाम को 11 बजे तक वो मेरे साथ था। सेवनटीन्थ को शाम रात के 11 बजे तक वो मेरे साथ था बात करते हुए, तो नॉर्मल था, ऐसा कोई उसमें डिस्कशन का या ऐसा।
0: विशाल जी, सिया और चेतन अब अरेस्ट हो चुके हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए आपकी तरफ से?
1: सर मेरा तो अभी भी मेरा न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की है और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पूरे पहले जड़ में जाए, धागे दोरे निकाले कि इसमें और किसी का हाथ है क्या, क्या है क्या नहीं। अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है तो उसको भी उसके अंदर गुनहगार बना के, और इनको जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि इनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि आज मेरा 26 साल का बेटा, उन्होंने इतने छोटी सी बात के लिए उसकी हत्या कर दी। अगर शादी नहीं करनी थी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर, एक सेकेंड में कैंसिल हो सकती है, इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, लेकिन इनकी थिंकिंग इतनी ये थी कि उन्होंने सीधा मेरा बच्चा मार दिया।
0: विशाल जी, क्या आपको लगता है कि सिया के परिवार सिया की जो रिलेशनशिप थी चेतन के साथ, उसके बारे में पता था?
1: होगा ना सर, ऐसे कैसे नहीं होगा, आप मुझे बताइए, आज हर एक के घर में बच्चे होते हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, किस माँ बाप को नहीं पता होता? ठीक है 100% नहीं होता है तो 30-40-50% तो पता होता है ना, किससे बात कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे।
0: आखिरी सवाल विशाल जी, अभी तक जो प्रोब हुआ है और हो रही है उससे आप क्या संतुष्ट हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या कुछ और होना चाहिए?
1: सर जब तक उनको सज़ा नहीं होती जब तक तो मैं सेटिस्फाइड या संतोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सुख चैन तो छीन लिया मेरे बच्चे को मार के, एक ही लड़का था मेरे को, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया, तो मैं उस बात से संतुष्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आज सरकार या न्याय व्यवस्था काम कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है।
0: विशाल अग्रवाल, NDTV से बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सर।
2: The most unsettling aspect of this entire story is that if everything we are seeing is correct, and remember Siya Goyal has confessed in front of the police, then it basically means that she saw murder of her fiancé as the least undesirable option to get out of this entire situation. That is the most alarming part. Joining me live to at least try and make some sense of what we're looking at, Meghna Pant is an author and journalist, Aarthi C. Rajaratnam is a psychologist and author, Satya Mole is an advocate with the Supreme Court and has handled similar cases in the past. I'd request all of you to keep your answers brief because we've got limited time, so I can take multiple questions. Meghna, to you first, the central question, you know, if you didn't want to marry a person, why not just say no? So what if there would be a little bit of family drama? What are you making of this?
3: It's absolutely horrific, and there's no way to condone what Sia has done and what her lover have done in collusion. And we also, Shiv, I think, need to stop pretending that the parents are innocent bystanders in arranged marriages. They're often the CEOs of the entire operation. They're the ones who are shortlisting candidates, negotiating terms. So I think what we need to really do is that stop putting your children in such a dilemma that they don't have the freedom to choose. The fact that this girl thought that she can't say no to a marriage proposal and instead chose murder is really very reflective of the fact that there was always clearly a communication gap between the parents and her. And I read somewhere that she was afraid of disappointing her parents, but you're not afraid to commit murder, which is going to come up in the public sphere. I mean, that doesn't even make any sense, to be honest.
2: Anita, what was Sia's other...